0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
0: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: एबीसी रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। आप सभी को सुप्रभात। अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे सुबह के 6 बजे के समाचारों के साथ।
2: नमस्कार। आदाब। इलुजीतू मां की सर्जरी के वक्त देश के अलग अलग इलाकों में कल दंगा फसाद शुरू होने लगा। ये हरकतें देर रात तक जाती रहीं। सैयद क्वामी स्थिति बेकाबू थी। अबेकोंबी में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। रात भर मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस की भारी तैनाती रही। बर्कली सैयद क्वा बेकोंबी रेजिडेंस मोगालकों पिछित रिवियर बॉम्बू ग्रॉ गोब रिशल्यू वगैरह में प्रदर्शन किए जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी में आग भी लगाई गई। कुछ समय बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सूरजवाली ने बताया कि इन हरकतों के चलते गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। देश में फसादों की वजह से आज सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षिक संस्थाएं बंद रहेंगी। शिक्षा मंत्रालय ने रात के दौरान ही ये फैसला लिया। यहां तक कि बच्चों और छात्रों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन रखने के लिए ग्रेड 4, ग्रेड 5 और एनसीई के इम्तिहानों के अलावा एससी और एचएससी के पर्चों को भी टाल दिया गया है। प्रदर्शनों की वजह से जेंडर इक्वालिटी और बाल विकास मंत्रालय ने भी सूचित किया कि आज सभी नर्सरीज और डे केयर सेंटर बंद रहेंगे। मेट्रो सेवाएं भी रुकी हुई हैं। फसादों से मेट्रो एक्सप्रेस के नेटवर्क को पहुंचाए गए नुकसानों के चलते आज सुबह 6 बजे मेट्रो सेवाएं नहीं दी जा सकेंगी। देश में उत्पन्न हालत की वजह से फिलहाल तकनीकी टीमें भी स्थल पर नहीं जा पा रही हैं। मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड सभी असुविधाओं के लिए क्षमा प्रार्थी हैं और जल्द से जल्द सेवाएँ सुचारू रूप से चालू करने की उम्मीद रखती हैं। कई घंटों की सर्जरी के बाद जख्मी एलुजीतू मां के शरीर से गोली निकाली जा सकी। ये ऑपरेशन कामयाब साबित हुआ। उनके नफ्स को नुकसान पहुंचाए बगैर ये हस्तक्षेप किया जा सका। करा स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय और मोशन डॉक्टरों को शाबाशी दी। एलुजीतू मां की हालत को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मंत्री अनिल बिच्चू ने जनता से इन छोटी बातों पर यकीन न करने की मांग की है। और रात के दौरान कई सांसद तथा राजनीतिज्ञ प्रदर्शन वाले स्थलों पर गए थे। उन्होंने देश में शांति बनाए रखने की मांग की और किसी की बातों में आकर देश के अमन को खतरे में ना डालने की अपील की है। विदेश में नेपाल में सैलाब की आफत आई है। कम से कम 15 लोग लापता है और उत्तर केंद्र में 200 से ज़्यादा घर तबाहकुन है। करीब 2 लाख लोगों को विस्थापन की चेतावनी दी गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल।
3: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 98.2 यू आर लिसनिंग योर आरएम3 रेडियो।

जमीन पर बसने वाला मुसलमान अपनी जिंदगी के हर कानून को, जिंदगी की हर अदा को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में डाल दे। अगर इंसान कानून इलाही के मुताबिक गुफ्तगू करता है, कानून रसूल के मुताबिक गुफ्तगू करता है, तो उसका गुफ्तगू करना भी इबादत से खाली नहीं होगा। अगर पड़ोसी के साथ सुलूक भी कानून इलाही और कानून रसूल के मुताबिक करता है, तो पड़ोसी के साथ सुलूक करना भी इबादत से खाली नहीं होगा। माँ बाप का रिस्पेक्ट और उनका एहतराम कुरान और हदीस के मुताबिक करता है, तो उसका माँ बाप के साथ उसने सुलूक भी इबादत से खाली नहीं होगा। रास्ते में तकलीफ दे अगर कोई चीज मौजूद है, अगर वो उसे हटा देता है और इंसान को राहत पहुंचती है, तो उसका ये काम भी इबादत से खाली नहीं होगा। किसी गरीब की अगर मदद कर देता है, तो ये मदद करना भी इबादत से खाली नहीं होगा। इसी तरीके से जरूरतमंद की जरूरत को वो पूरी कर देता है, तो उसका जरूरतमंद की जरूरत को पूरी कर देना ये भी इस्लाम से खाली नहीं होगा, इबादत से खाली नहीं होगा। गर्ज के इस्लाम एक वसी तरीन अपने अंदर कॉन्सेप्ट रखता है और इस्लाम अपने अंदर एक वसी तरीन मफहूम रखता है। जिंदगी गुजारने के हर उसूल और हर तरीके को इस्लाम ने अता किया। घर जाओ तो कैसे जाओ, बैठो तो कैसे बैठो, चलो तो कैसे चलो, खाओ तो कैसे खाओ, पियो तो कैसे पियो, बैठो तो कैसे बैठो, पड़ोसी के साथ सुलूक करो तो कैसे करो, मुल्क में रहो तो कैसे रहो। गर्ज के जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को जो जो मरहले आते हैं, हर मरहले के लिए इस्लाम ने कानून अता किया है, इस्लाम ने जाब्ता अता किया है, इस्लाम ने दस्तूर अता किया है। यही वजह है कि जब हम इस्लाम के हवाले से तारीख का मुताला करते हैं, तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है कि मुतासिर होने वाले लोग जो इस्लाम से मुतासिर होते हैं, कभी सहाबा की गुफ्तगू सुनकर मुतासिर होते हैं, कभी उनका किरदार देखकर मुतासिर होते हैं, कभी उनका कैरेक्टर देखकर मुतासिर होते हैं, कभी उनके साथ लेन देन करके मुतासिर होते हैं, कभी उनकी सच्चाई देखकर मुतासिर होते हैं, कभी उनकी वादे की वफा देख करके मुसलमान होते हैं। गर्ज के आप जिंदगी के अंदर फैलते हुए इस्लाम को अगर आप देखेंगे, तो उसमें इस्लाम का वो हुस्न जो सहाबा की जिंदगी से निखरता चला जाता था, वही हुस्न जो है दुनिया देखती थी और इस्लाम से मोहब्बत करती थी और इस्लाम के हसीन पैगाम को अपने सीने के अंदर जगह देने की कोशिश करती थी। मैं आज ये चाहूंगा कि इस्लाम ने इंसानों से गुफ्तगू करने का तरीका क्या बताया है, कि हम जब इंसान से गुफ्तगू करें तो हमारा लबो लहजा क्या हो, हमारा अंदाज क्या हो, हमें कुरान इस सिलसिले में क्या तालीम देता है, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तालीम देते हैं। इसलिए कि सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हमारे जिस्म के जितने भी आजा हैं, वो सारी चीजें अल्लाह की अमानत हैं और जाहिर सी बात है अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे तो आजा बर्बाद हो जाएंगे और उनके मर्जी से इस्तेमाल की बुनियाद पर हम दुनिया में भी जलील होंगे और रुस्वा होंगे। लेकिन अगर कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो यही हमारा वजूद, यही हमारे आजा हमें इज्जत भी अता करेंगे और सरबुलंदी भी अता करेंगे। जहां बहुत सारी खराबियां इस सोसाइटी के अंदर पैदा हुई, वहीं पर एक खराबी ये भी पैदा हुई कि आज गुफ्तगू का अंदाज, आज अंदाजे तकल्लुम जो है वो इंसान का देखा जाए तो इंसान की जिंदगी के अंदर अंदाजे तकल्लुम के अंदर बहुत सारी बेराहरवी नजर आती है। आज सोसाइटी का जायजा लीजिए, सोसाइटी का मुताला कीजिए, तो अल्लाह अकबर, अगर किसी को सेठ का मनसब मिल चुका है और वो अगर सेठ की कुर्सी पर बैठा है, तो उसका ताल्लुक, उसका अंदाजे गुफ्तगू अपने नौकर के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे आका और गुलाम नजर आते हों। गाली उसकी जबान पर है, नौकर को जानवर से बदतर तसव्वुर किया जाता है, नौकर के साथ बदकलामी की जाती है। और अगर कोई साहिब दिल किसी को टोक दे कि यार ये भी इंसान है, गाली तो न दो, तो जवाब में यही कहते हुए नजर आएंगे, ये गाली वाली बात ही समझते हैं, गाली के बगैर की बात नहीं समझते। मैं ये कहना चाहूंगा, रुए जमीन पर इंसान को अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला ने एक आजाद इंसान की हैसियत से पैदा किया है। इंसान सब खुदा के बंदे हैं, उनके साथ तकल्लुम कैसा होना चाहिए। हमारा दीन हमें इंसानों से गुफ्तगू करने का अंदाज भी सिखाता है और नौकरों के साथ सुलूक का ढंग भी सिखाता है। आज ये मैं आपको बताऊं, रसूल

गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस के अंदर हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बचपन ही से रसूल आजम की खिदमत में थे। कमोबेश 8 या 10 साल की उम्र थी तब से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत कदे में वो तशरीफ लाए थे और जब 18 साल की उम्र होती है तब आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। लेकिन हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी के कीमती 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारे और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे। मैं खादिम की हैसियत से था, मैं रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत गुजार की हैसियत से था और जाहिर सी बात है कि कम सीनी की वजह से, कम उम्री की वजह से मुझसे कोताहियां भी होती थी, लफ्जिशें भी होती थी। लेकिन मैं कसम खा करके कहता हूँ कि 10 साल की खिदमत के अरसे के अंदर मैंने कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से मेरे लिए लफ्ज उफ भी नहीं सुना है। कभी सरकार ने मुझे उफ भी नहीं किया बल्कि हमेशा शफकत के साथ मेरे मुस्तफा मुझसे पेश आते रहे। आप अंदाजा लगाएं, एक सेठ ये चाहता है कि नौकर के दिल में मेरी मोहब्बत हो, एक सेठ ये चाहता है कि नौकर मेरा एहतराम करे, एक सेठ ये चाहता है कि नौकर मेरी अजमत का लोहा माने। लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी को जलील करके तुम इज्जत हासिल नहीं कर सकते, किसी को रुसवा करके तुम इज्जत हासिल नहीं कर सकते, किसी को गुलामी की जंजीरें पैर में डाल करके तुम इज्जत हासिल नहीं कर सकते। वो भी एक इंसान है, तुम अपना मुस्तकबिल नहीं जानते। आज कुदरत ने तुम्हें सेठ के मनसब पर रखा है, हो सकता है आने वाले दिन के अंदर जो तुम्हारी खिदमत में है वही सेठ की कुर्सी पर बैठ जाए और तुम गुलामी की कुर्सी पर आ जाओ, उस वक्त तुम कैसा बर्ताव पसंद करोगे? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि नौकर के साथ भी हमारा व्यवहार, हमारा ताल्लुक, हमारा सुलूक, हमारी जबान, हमारी गुफ्तगू, हमारा अंदाज़े तकल्लुम नहायत शाइस्ता होना चाहिए। कुरान ने सिर्फ मुसलमानों के लिए कैद नहीं रखी कि मुसलमान से अच्छी तरीके से गुफ्तगू करो, कुरान ने कहा वकूलु लिन्नासे हुस्ना, लोगों से अच्छी तरीके से बात करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान कितना अच्छा है, इंसान कितना प्यारा है, इतना कि इंसान कितना सुलझा हुआ है, इंसान कितना बाखलाक है, इंसान कितना बाकिरदार है, इंसान कितना अच्छा है, इंसान के अंदाज कितने अच्छे हैं, ये उस वक्त तक समझ में नहीं आता जब तक कि उसकी गुफ्तगू न सुन लो। अगर गुफ्तगू सुनोगे तो पता चल जाएगा, अगर जबान से नरमी है तो अल्लाह अकबर, उसके हुस्न तकल्लुम से इंसान मुतासिर होता हुआ नजर आएगा। आपने कभी डॉक्टर को देखा है, कभी तबीब को देखा है? अल्लाह अकबर। आप जानते हैं अंग्रेजी इंग्लिस्तान के अंदर बर्तानिया की सरजमीन के ऊपर बच्चों का एग्जाम हो रहा था, सर्जरी का एग्जाम हो रहा था, स्टूडेंट उसके अंदर बैठे हुए थे और उसी मौके पर एग्जामिनर ने उनसे ये क्वेश्चन किया कि अगर किसी को शॉक लग जाए, अचानक कोई हादसा हो जाए और किसी इंसान को सदमा पहुंच जाए, तो सदमे में अगर कोई आ जाए तो उस सदमे में आने वाले को सदमे से निकालने का तरीका क्या है? तो उस वक्त स्टूडेंट्स ने जो जवाब दिए वो जवाब ऐसे नहीं थे जिससे उनको पास किया जाए, तकरीबन बच्चे फेल हुए। उसके बाद स्टूडेंट्स ने एग्जामिनर से पूछा, अब आप ही बताएं अगर किसी को सदमा हो जाए, शॉक लग जाए, तो उसको निकालने का तरीका क्या है? तो बर्जस्ता उसने कहा, बस इतना करो उसको तसल्ली के जुमले कह दो, वो सदमे से बाहर आ जाएगा। पता चला जुमले इंसान की जिंदगी को तब्दील कर दिया करते हैं, इंसान को गम से निकाल दिया करते हैं, इंसान को परेशानियों से निकाल दिया करते हैं। किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर की जबान और डॉक्टर का अंदाज और डॉक्टर का हुस्न तकल्लुम सुन करके आधी बीमारी तो गायब हो जाती भी नजर आती है। इसीलिए अच्छे तबीब की पहचान ही ये बताई गई कि अच्छे तबीब की अलामत ये है कि उसकी बात सुन करके बीमार की बीमारी अच्छी हो जाया करती है। आप अंदाजा लगाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान ने वाज़े लफ्जों में कहा लोगों से अच्छी तरीके से बात करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अच्छे कलाम के हवाले से क्या फरमाया, अच्छी गुफ्तगू के हवाले से क्या फरमाया।
سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی عورت کا بچہ گم جائے یا کسی عورت کے بچے

का इंतकाल हो जाए और उस औरत को अगर कोई तसल्ली के जुमले कह दे कि माई तू गम न कर, जाने वाला बच्चा तो चला गया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला तुझे सब्र की तौफीक अता फरमाए, मरा हुआ बच्चा तो फिर से जिंदा नहीं हो सकता, खोया हुआ बच्चा अल्लाह तुझे मिला दे। इस तरीके से तसल्ली के अगर कोई जुमले कोई औरत को अगर कह देता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उस औरत को तसल्ली देने वाली को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। आप अंदाजा लगाएं, ये तसल्ली आमेश कलिमात की बरकत है, ये तसल्ली आमेश जुमलों की बरकत है, ये अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की बरकत है। इसीलिए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तकल्लुम फरमाते थे, जब गुफ्तगू फरमाते थे, जब बातचीत करते थे, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाजे गुफ्तगू देखकर, रसूल आजम का हुस्न तकल्लुम देखकर दुनिया अंगुष्ट बदंदा रह जाती थी और मुतासिर हुए बगैर नहीं रहती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप शायद न जानते हो कि अच्छी बात कहना ये कितना बड़ा काम है। तवज्जो चाहूंगा, मुसलमानों अपने किरदार को संवारो, मुसलमानों अपनी गुफ्तार को संवारो, मुसलमानों अपने अंदाजे जिंदगी को संवारो। तुम्हें किसी हीरो से या किसी सिनेमा से या किसी वेस्टर्न से तुम्हें कोई किरदार सीखने की जरूरत नहीं है। कुरान तुम्हें नसीहत कर रहा है, हदीस तुम्हें नसीहत कर रही है, रसूल आजम की हयात तैयबा तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, इसे पेश नजर रखो। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो मेरी अक्ल में मेरा मुझे अजीब सी कैफियत मुझ पर तारी हो गई। मैंने सोचा या अल्लाह, अच्छी गुफ्तगू का इतना ऊंचा मकाम है, अच्छी बात करने का इतना ऊंचा मकाम है। हजरत अदी इब्ने हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अदी इब्ने हातिम से फरमाया, ए अदी, तुमसे हो सके तो सदका करके सदका करो, चाहे एक टुकड़ा ही खजूर का क्यों न हो, और इतना सा सदका करके तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। सदका करो चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों न हो, और अपने आप को जहन्नम से बचाओ। और आगे का जुमला समाअत फरमाएं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे पास खजूर सदके के लिए नहीं है तो लोगों से अच्छी बात कहो कि ये भी तुम्हारे लिए जहन्नम से बचने का जरिया है। अंदाजा लगाएं, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना ये जहन्नम से बचाव का जरिया है। आज हमारी जबानें आग उगलती हैं, घर पहुंचते ही मियां बीवी और बच्चों पर बरसने लग जाते हैं, बाप बेटों पर बरसने लग जाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी पर बरसने लग जाते हैं। आज हमारा अंदाजे गुफ्तगू ये शाइस्ता नजर नहीं आता, शराफत से भरा हुआ नजर नहीं आता। हमारे अंदाजे गुफ्तगू से इंसान के दिल में हमारी मोहब्बत बैठने की बजाय आज हमारी हमारे अंदाजे गुफ्तगू की वजह से आज लोगों के दिलों के अंदर हमारी अहमियत खत्म होती जा रही है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जबान बड़ी कीमती है, ये खुले तो अच्छी बात के लिए खुले। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद माया, हो सके तो अच्छी बात कहो वरना चुप रहो। पता चला ये जबान अच्छी बात कहने के लिए है। इसीलिए आप देखें कि दुनिया में जो अच्छी बात करते हैं, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, इंसान के दिल में उसकी मोहब्बत भी होती है, उसका एहतराम भी होता है, उसका वकार भी होता है, उसकी इज्जत भी होती है। किसी दुकान पर चले जाओ, अगर सेल्समैन तुरशरुई से बात करे, तलखी से बात करे, कस्टमर भाग जाता है, और दुकान का मालिक ऐसे सेल्समैन को नौकरी पर रखता ही नहीं जिसकी जबान से तलखी निकलती हो, बल्कि ऐसे ही को नौकरी मिलती है जिसकी जबान से मिठास हो, जिसकी जबान में सुकून हो, जिसकी जबान के अंदर अच्छे अल्फाज हो, ऐसे ही को जॉब मिला करती है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप दुनिया में अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करने वाले का मकाम देखें और उनकी हयात तैयबा का मुताला करें तो आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर, इंसान कभी कभी लाशऊरी तौर पर अपनी जबान से कुछ ऐसी बात कह देता है कि उसे खबर भी नहीं होती उसने क्या कहा, लेकिन वही जुमला मेरे आँख

0: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लाशऊरी तौर पर इंसान की जबान से निकलने वाला कभी कोई जुमला ऐसा भी होता है जो बुलंदी से पस्ती की तरफ ले जाता है, और कभी कोई ऐसा जुमला निकल जाता है जो पस्ती से उसे बुलंदी की तरफ ले जाए।
1: समीन आदाब।

ईमान वालों को अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न करें इस पर मबनी यह हदीस मुबारका समाअत कीजिए। हजरत अबू हुरैरा रदिल्लाहु ताला से रवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने साथियों की जमात पर से गुजर हुआ जो हंस रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह के कहर व जलाल और क़यामत व आखिरत के लर्जा खैज खौफनाक अहवाल के मुतालिक तुम्हें वो सब मालूम हो जाए जो मुझे मालूम है तो तुम्हारा हंसना बहुत कम हो जाए और रोना बहुत बढ़ जाए। बस हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह ताला आपसे फरमाते हैं कि आप मेरे बंदों को मेरी रहमत से क्यों मायूस करते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उनके पास तशरीफ़ ले गए और उनसे फरमाया, अल्लाह की रहमत से पुर उम्मीद रहो और खुश रहा करो।

जबान अल्लाह ताला की एक अजीम नियामत, यही जबान सामीन दिलों को जोड़ भी सकती है और दिलों को तोड़ भी सकती है। एक नर्म जुमला किसी मायूस इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है और एक सख्त लफ्ज बरसों के ताल्लुक को जख्मी कर सकता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक हमें सिखाती है कि गुफ्तगू में नरमी, लहजे में मोहब्बत और अल्फाज में शाइस्तगी एक मोमिन की पहचान है।

तो भाई माताजी आज चंद्रघंटा माताजी पूजा करवामां आवे छे ने तेमनी पूजा करवाथी भक्तों ने लांबा आयुष्य आरोग्य अने सुख अने समृद्धि नुं वरदान मळे छे। चंद्रघंटा माताની कृपा थी भाई साधकना तमाम पाप अने विघ्नों नाश थाय छे अने तेमनी आराधना थी एक महा

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

शक्ति। मंगलवार 13 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:45 हो रहे हैं। भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आरएम 3 रेडियो मनोरंजन पर आप सभी श्रोताओं का अभिवादन, आप सबका स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति में शक्ति लेकर आपकी सेवा में हम उपस्थित हो चुके हैं। जय माता दी आप सभी को। नवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं। नवरात्रि का ये जो पावन पर्व है, माता दुर्गा के आगमन का पर्व होता है, माता दुर्गा की कृपा का पर्व होता है, उनकी शक्ति को दर्शाता है, उनके प्रति हम अपनी भक्ति को दर्शा पाते हैं। और आज नवरात्रि के इस पावन पर्व का तीसरा दिन है। शारदीय नवरात्रि के इस तीसरे दिन में माँ चंद्रघंटा को हम पूजते हैं, माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है ये दिन। और माँ चंद्रघंटा की उपासना जो भी करता है वो माँ की कृपा को प्राप्त करता है। तो चलिए माता रानी का ध्यान करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं।

जी हाँ कि फिर से नवरात्रि आ गई और नवरात्रि के इस शरदीय नवरात्रि का जो इंतज़ार है हम साल भर करते हैं। ऐसे माँ की कृपा को तो हर कोई पाना चाहता है। माँ कहीं ना कहीं जननी है। माँ जो है शक्ति का स्वरूप है, दिव्य है, तेजस्वी है, साहसी है और साथ में शांति भी प्रदान करती है। कहीं ना कहीं माँ चंद्रघंटा जो है अपने भक्तों को भय से मुक्त करती है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देती है और शक्ति प्रदान करती है। और माँ की पूजा अर्चना करके परिवार में सुख, समृद्धि, खुशहाली और मंगलमय जीवन जो है भक्त प्राप्त करता है। और माँ के नौ रूपों के, नौ स्वरूपों का नौ महत्व होता है और कहीं ना कहीं हर एक रूप अपने आप में कुछ ना कुछ हमें अवश्य सिखाता है। जब हम जीवन की बात करते हैं श्रोताओं, तो जीवन में जो कुछ होता है कहते हैं ना, उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। वैसे ही माता रानी के नौ रूपों से भी हम बहुत कुछ जान पाते हैं, बहुत कुछ सीख पाते हैं। और नवरात्रि का ये पावन पर्व इतने भव्य रूप से मनाया जाता है कि हम क्या कहें। कहते हैं जब माता रानी को सच्चे मन से याद करते हैं, सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं, तो श्रद्धालु के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि तो आती ही है, साथ ही उनकी सभी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और खासकर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो है हमारे जीवन में, जितनी भी महिलाएं हैं, किसी ना किसी रूप में जो है माता का ही स्वरूप है, इसलिए हमें उन सबका सम्मान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। इसी कारण से उन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह है और उसका स्वरूप साहस है, शक्ति है और निडरता का प्रतीक है। जी हाँ, जीवन में कभी कभार ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ पर हमें साहस के साथ, निडरता के साथ जो है जीवन को व्यतीत करना पड़ता है। तो ऐसे में माँ जो है हमें वही साहस प्रदान करती है।

जी हाँ, जग जननी माँ तुम करो दया। और माँ जो है सदैव दया करती है, करुणा करती है, सब पर अपनी कृपा को बरसाती है। और कहीं ना कहीं जो है कभी कभार हम जो है अपनी ही शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। तो जब भी ऐसे पर्व आते हैं जो शक्ति का स्वरूप होते हैं, जो आत्मीय ज्ञान का स्वरूप होते हैं, जो हमें सही मार्गदर्शन दिखाते हैं, तो इन सभी पर्वों को हमें सबके साथ मिलकर एकता के साथ, प्रेम की भावना के साथ, भक्ति की भावना के साथ मिलकर इसे मनाना चाहिए। क्योंकि जब भी हर एक पर्व को हम एक साथ मिलकर मनाते हैं, सबसे पहले तो ये हमारे बीच एकता को दर्शाता है, ये हमारे बीच करुणा को दर्शाता है। हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं, हम एक दूसरे की संस्कृति को समझ पाते हैं। और जब हम सभी मिलकर इन सभी पर्वों को मनाते हैं, जितने भी बड़े बड़े पर्व आते हैं, जैसे कि अभी नवरात्रि का ये जो पावन पर्व है, 9 दिनों तक चलेगा, जो दशमी से 10वें दिन समाप्त होगा, जब भी हम ऐसे बड़े बड़े पर्वों को मनाते हैं, हम अपने बच्चों को ये सीख देते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमारे लिए कितनी आवश्यक है। इनके बिना हम अधूरे हैं, इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। और जब भी इन पर्वों को हम सबके साथ मिलकर मनाते हैं, ये समाज में एक ऐसा संदेश देता है जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एकजुट होकर रहना कितना आवश्यक होता है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना कितना आवश्यक होता है, एक दूसरे के प्रति करुणा होना कितना आवश्यक होता है।

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

शक्ति। देखते ही देखते दिन के 11:15 बजे रहे हैं। भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आपका साथ हमें मिल रहा है रेडियो मनोरंजन पर। आपके साथ के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, नवरात्रि का ये जो पावन पर्व है अब सिर्फ धार्मिक पर्व तक सीमित नहीं रहा है। इस पर्व को बड़े ही भव्य रूप से, भक्ति भाव से, एक बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। महिलाएं सवेरे सवेरे माता रानी की आराधना करती है, फिर जो है पारंपरिक तौर पर तैयार होकर अगर काम करती है तो काम पर जाती है, फिर शाम को हर कोई अपना व्रत माता की पूजा के साथ, माता की आरती के साथ व्रत को संपन्न करता है और एक साथ बैठकर सभी परिवार जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये परिवार में भी एकता को दर्शाता है, सामाजिक रूप से भी ये दर्शाता है कि हमारे समाज के लोग जो है अपने संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपने धर्म के प्रति कितने निष्ठापूर्वक है और कितनी लगन से, कितनी आस्था से हम इस नवरात्रि के पावन पर्व को मनाते हैं। और कहीं ना कहीं अपने जीवन को हम माता रानी को सौंप देते हैं, क्योंकि जीवन में जो कुछ होता है कहीं ना कहीं उन्हीं की इच्छा से होता है और वही जो है हमें पार भी लगाती है।

0: शक्ति।
1: श्रोताओ, माता रानी का जय जयकार चारों ओर गूंज रहा है। माता रानी की पूजा आराधना चारों ओर हो रही है। ऐसे समय एक अलग ही शक्ति की अनुभूति हम अपने आसपास करते हैं और इस शक्ति का सही उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि शक्ति जो होती है कहीं ना कहीं लोगों की सहायता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। शक्ति जो होती है इसका प्रयोग लोगों की मदद के लिए करना चाहिए। शक्ति जो होती है एक दूसरे का साथ देने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। और शक्ति स्वरूपिणी माता रानी को हम नमन करते हैं और इसी के साथ, इस अंतिम प्रस्तुति के साथ आज के कार्यक्रम का समापन हम करते हैं। इतने प्रेम से आपने साथ दिया, धन्यवाद। आप सभी को जय माता दी। नवरात्रि का ये पावन पर्व आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना हम करते हैं। 11:30 बजे से आप चाइनीज भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे जिनकी प्रस्तुति में, तो हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। 12:00 बजे सुहाना सफर इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारी आपकी भेंट होगी।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार आपको
4: नमस्कार रादा अभी इस अच्छी खबर से शुरू करते हैं एलोजी टोमा को होश आ गया है उन्होंने अपनी मां को देखा लेकिन अभी वो बात करने की ताकत नहीं रखती स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस सम्मेलन के दौरान सभी जानकारियां दी हैं एलोजी टोमा की मेडिकल रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय के सुपुर्द की जा चुकी है एलोजी की झबड़ों से गोली को निकाला जा सका है जो उनके मुख्य ब्लड वेसल और अहम नर्व्स के बहुत पास थी वो कड़ी निगरानी के तहत हैं क्योंकि उन्हें अभी फॉलोअप की ज़रूरत है और आगे चलकर उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से ही इलाज करवाने की ज़रूरत है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि उनका फॉलोअप भारतीय डॉक्टरों द्वारा ही किया जाएगा देश भर में अभी माहौल शांत है सभी सड़कें गाड़ियों की आवाजाही के लिए खुली हैं शांति और सुरक्षा का आश्वासन रखने के लिए मुख्तलिफ रणनीतिक इलाकों में पुलिस की भारी तैनाती है विभिन्न इकाइयों के अफसर विभिन्न जगहों पर मौजूद हैं सार्वजनिक क्षेत्र में काम सुचारू तरीके से चल रहा है व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां देश भर में जारी हैं सभी सरकारी विभाग कार्यरत हैं और जहां तक निजी क्षेत्र की बात है बिजनेस मिनिस्टर्स ने हिफाजती कदम के तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का उपाय भी दिया है देश के अलग अलग इलाकों में काफ़ी तोड़फोड़ हुई है पुलिस के वाहनों पर वार किया गया है इसके अलावा पुलिस स्टेशनों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है बॉम्बू और बौकली के पुलिस स्टेशन को काफ़ी क्षति पहुंची है यूनाइटेड बस सर्विस एम्प्लॉयज़ ने एक विज्ञप्ति जारी की है पुलिस के आश्वासन और अधिकारियों द्वारा स्थिति पर काबू पाने के बाद यूबीएस की बसें सामान्य रूप से कार्यरत हैं जहां तक एनटीसी की बात है तो धीरे धीरे उसकी भी गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं विदेश में 30 से ज़्यादा साल बाद कनाडा का एक बड़ा व्यापारिक डेलीगेशन भारत गया हुआ है 300 से ज़्यादा उद्योगपति साझेदारी की नई संभावनाओं पर बातचीत करेंगे इसके अलावा दोनों देश सेटा पर भी दस्तखत करने वाले हैं जिसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापारिक और द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होने वाले हैं तो अभी के लिए बस इतना ही इजाज़त दीजिए नमस्कार और आदाब
5: on NBC Play.

नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

सुहाना सफर। मंगलवार 13 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 12:04। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लवली लिसनर्स का वेलकम है। मैं हूँ समिता और सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आप सबका एंटरटेन करने के लिए, आप सभी का मनोरंजन करने के लिए अभी से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आज हमारा और आपका साथ रहने वाला है अप टिल 3 PM। सो हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून आप सभी को, और जुट जाइए इस खूबसूरत सफ़र में एवरग्रीन गानों के। आपकी डेडिकेशंस, आपकी फरमाइशें ऑब्वियसली हम इंक्लूड करेंगे। नॉट टू फॉरगेट, आप हमें कॉल कर सकते हैं 4028070 पर, साथ ही आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं 5250620 पर। चलिए उम्मीद करते हैं दिन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा और आप जो हैं हमारे इस प्रोग्राम से कनेक्ट हो चुके हैं। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो सुहाग फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जय माता दी आप सभी को।

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर। जी हाँ, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और गाने इतने कमाल के हो तो कौन इन गानों को गाए बगैर या गुनगुनाए बगैर रह सकता है। चलिए, यह है आपके सितारे प्रोग्राम, नहीं आपके सितारे नहीं, आपके सितारे तो चार बजे होते हैं। यह है सुहाना सफर प्रोग्राम, और आज सुहाना सफर इस प्रोग्राम में एक सितारे के बारे में हम बात करेंगे। एक ऐसा सितारा जो हमारे बीच नहीं है लेकिन फिर भी आज तक चमक रहा है। आज ही की तारीख यानी कि 13 अक्टूबर 1987 को चल बसे थे भारतीय सिनेमा के पॉपुलर प्लेबैक सिंगर किशोरदा। तो आज के हमारे प्रोग्राम में अगर आप किशोरदा के कोई गाने सुनना चाहते हैं तो बेशक आपका वेलकम है, आप अपने डेडिकेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। और किशोरदा के बारे में क्या कहे, कमाल की गायकी, कमाल का अंदाज, गायक के साथ साथ एक्टर भी रह चुके हैं और लगभग सभी भारतीय भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। हिंदी के साथ साथ बंगाली, मराठी, आसामी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया, उर्दू जैसी भाषाओं में, और इनकी आवाज़ को आज भी हम सुनना पसंद करते हैं।

0: सफर सुहाना सफर।
1: यकीनन हमारा और आपका संगम तो हो रहा है और यहाँ पर हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, रेडियो मनोरंजन पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस लवली प्रोग्राम को आप एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आपके डेडिकेशंस, आपकी फरमाइशों के लिए दैट वी आर रिसीविंग ऑन 4028070 एंड 5250620 पर। चलिए इस समय साइदा जी हमारा साथ दे रही है और कह रही है कि किशोरदा की बात हुई तो किशोरदा की आवाज़ में रंगोली फिल्म का गाना अगर हो सके तो चला दीजिए। बिल्कुल साइदा जी, रंगोली फिल्म का ये जो गाना है छोटी सी ये दुनिया, आपके नाम, आपकी ओर से ये गाना इरफान के नाम, जोहान के नाम और यहाँ पर आपके सभी दोस्तों के लिए, सभी परिवार के लिए जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है।

0: सफर।
1: चलिए आपका बेशुमार प्यार हमें हमेशा ही मिलता है रेडियो मनोरंजन के सभी प्रोग्रामों में, और ये दोपहर का वक्त है। लंच करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गानों को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी को बुना बेची और खूबसूरत गानों के बीच चलिए जो अगला गाना है चलने ही वाला है। आज किशोरदा कि जो है किशोरदा को हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। अगर आप भी किशोरदा के गाए हुए गाने सुनना चाहते हैं तो बेशक आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनकी बरसी है आज, और यहाँ पर नंदा जी पाई से हमारा साथ दे रही है। कहती है कि किशोरदा की बात हो गई तो उन्हें मन किया कि हीरा पन्ना फिल्म का ये गाना वो सुनना चाहती है। गाना जाता है उनके पति दीपक के नाम, साथ में बहू है, बेटे हैं, दिव्या है, साथ में है आशील, अविनाश, अभिषेक, अलवीना, गुलू है, अरवी है, सभी पुनीता परिवार, सभी गणेश परिवारों के नाम हीरा पन्ना फिल्म का ये तराना चल पड़ा।

0: सुहाना सफर।
1: यकीनन गानों को सुनते सुनते प्यार हो ही जाता है, और जहाँ पर प्यार होता है ना, वहाँ पर नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि प्यार जो है सबको अपनाता है, और जहाँ नफ़रत होती है वहाँ पर कोई ठहर ही नहीं पाता है। तो जहाँ तक हो सके हमें जो है प्यार फैलाना चाहिए, अपनापन फैलाना चाहिए, भाईचारे की जो भावना है ये अपने आप में होनी चाहिए, और एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए अच्छे कामों के लिए। चलिए यहाँ पर देखते ही देखते 12:55 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। इस अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 1 बजे के समाचार की ओर, और हमारी आपकी मुलाकात होगी सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम के सेकेंड आवर में। तो आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहे ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: एक बज चुका है, आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अदिति और निर्मा दोनों को नमस्कार।
1: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। शुरुआत करते हैं एलोजी तुमा की स्थिति को लेकर। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने प्रेस को संबोधित करते हुए ये अच्छी खबर सुनाई कि एलोजी तुमा का ऑपरेशन सफल रहा है। उन्होंने बताया कि उसने आज सुबह आंखें खोली हैं और वो होश में है, उसके हाथ और पैर भी सही सलामत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये एक जटिल ऑपरेशन रहा जो 5 चरणों में पूरा किया गया। उसके लिए 7 घंटे लगे। हर चरण का ऑपरेशन एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के नेतृत्व में किया गया। प्रेस सम्मेलन में मौजूद डॉक्टर उमेश शामलोल ने कहा कि इसके लिए भारत से एक पूरा ऑपरेशन थिएटर यहां लाया गया है, जिसमें कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ENT, न्यूरोसर्जन, एनेस्थेसिस्ट, नर्सेस आदि शामिल रहे और उन्होंने सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन पूरा किया। कल रात देश के कई इलाकों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए, पहिए जलाए गए और पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई। बाखली और अबेखुंबी पुलिस स्टेशनों पर कॉकटेल, मोलोटोव फेंके गए और तोड़फोड़ की गई। पुलिस और SMF की टीमें संबद्ध इलाकों पर तैनात हुई हैं। बॉम्बों में सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती के साथ स्थिति पर काबू किया जा सका है, जबकि पुलिस कम्युनिकेशन सेल के अनुसार लागोलेत में अभी भी स्थिति संभालने के लिए कार्रवाइयां चलाई जा रही हैं। तोड़फोड़ मचाने और अस्थिरता फैलाने के लिए करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल बताए जाते हैं। सावधानी के तौर पर आज 13 अक्टूबर को देश की सभी शिक्षा संस्थाएं बंद रखी गई। शिक्षा मंत्रालय का ये फैसला सरकारी और निजी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों, सैन्य स्कूलों तथा टेक्निकल और वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्रों पर लागू हुआ। आज के लिए निर्धारित सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाएं भी टाल दी गईं। इससे ग्रेड 4 और 5 के असेसमेंट, NCE, SC और HSE की परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। मंत्रालय के अनुसार नई तारीखों की घोषणा के बाद में की जाएंगी। आज विभिन्न डे केयर सेंटर भी बंद रखे गए, जबकि उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर पर कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। हालात पर करीबी से नजर रखी जा रही है, जिसके आधार पर शिक्षा संस्थाओं की गतिविधियां दोबारा जारी रखने के बारे में शिक्षा मंत्रालय आगे बयान जारी करेगा। कल रात के दौरान देश के कई इलाकों में अस्थिरता बनी रही, जिससे आज सुबह यातायात भी असामान्य रहा, लेकिन अधिकारियों की तरफ से आश्वासन मिलने पर बस नेटवर्क धीरे धीरे सामान्य पर लौट रहा है। पश्चिमी इलाकों में चलने वाली बसों के अलावा बाकी इलाकों में बसें सुबह 6 बजे से अपनी लाइनों पर चल रही हैं। सुबह करीब 10 बजे 11 बजे से पिटिथ्रिविया के लिए भी बस सेवा फिर से शुरू की गई है। विदेश की खबर निर्मा के साथ।

0: अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक मनोरंजन पार्क में एक रोलर कोस्टर को लेकर पेश आई घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। जानकारियों के अनुसार रोलर कोस्टर एक जगह पर फंस गया जिससे लोगों को निकलने के लिए कर्मचारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा।
1: ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। गोथ्रेलेन लामेरी ओकुले में, गोथ्रेलेन लामेरी ओकुले में 83 साल के 83 years old श्री गोविंदन वेंगदालों, श्री गोविंदन वेंगदालों जो नंदन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 4 बजे, इनकी अर्थी आज शाम 4 बजे इनकी पत्नी श्रीमती राजामणि कारोपुनेन के मकान गोथ्रेलेन लामेरी ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अली भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डियर 4 पीएम। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
2: Your news on MBC Play and MBC.mu. You're listening to RM3 Radio.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: सुहाना सफर
1: चलिए आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है एंड दिस इज द सेकंड आवर ऑफ योर सुहाना सफर ऑन रेडियो मनोरंजन और मैं हूँ सुमिता आप सभी का साथ दे रही हूँ। और कब पहला घंटा खत्म हो गया और कब हम सेकंड आवर में आ गए पता ही नहीं चला। और आज तो हमारा प्रोग्राम 3 बजे तक चलने वाला है, तो चलिए अभी तक अपनी फरमाइशें अपनी डेडिकेशंस आपने हम तक नहीं पहुँचाए हैं तो देर किस बात की है, अभी भी पहुंचा सकते हैं। यू कैन कॉल अस ऑन 4028070 और यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250620 पर। और खूबसूरत गानों का ये सिलसिला जारी है और आज किशोरदा की बरसी है, सो बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो है उनके गाए हुए गानों की रिक्वेस्ट कर

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: यस यही प्यार है और इससे बेहतर प्यार को हम कैसे बयां कर सकते हैं। चलिए रॉकी फिल्म का ये खूबसूरत सा तराना आप अभी सुन रहे थे किशोरदा और लता जी की आवाज़ों में। और किशोरदा के सोलो हो या ड्यूएट्स हो सभी अपने आप में बड़े कमाल के हैं। और चलिए इस समय किशन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहते हैं नमस्ते सुमी जी, किशोरदा के गाने एकदम मस्त हैं और कह रहे कि जो गाना वो सुनना चाहते थे वो तो ऑलरेडी हमने चला ही दिया। और किशोरदा के गानों की बात आती है तो कहते हैं कि सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा गाना जो है हम डेडिकेट करें या किस गाने की फरमाइश करें, क्योंकि सभी के सभी गाने इतने कमाल के हैं। बिल्कुल हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। आप लिखते हैं कि आप सभी घर पर हैं और मज़ेदार सा लंच आपने किया, आपने तो पूरा लंच का जो लिस्ट है हमें भेज दिया, अब इसे पढ़कर हमें भी भूख लग गई। चलिए कोई बात नहीं, अगला गाना जो है आपने कहा आज मदहोश हुआ जाए रे, तो चलिए गाना आपके नाम करते हैं। शर्मिली फिल्म का ये तराना है किशोरदा और लता जी की आवाज़ों में। किशोरदा के सभी फैंस के नाम, आपके सभी फैमिली के लिए और ख़ासकर किशोरदा का ये गाना किशन जी आपके लिए भी, आपके मैसेजेस हमेशा बड़े कमाल के होते हैं।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए यहाँ पर गानों के बीच में ये अगला तराना अब हम जोड़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई है, धन्यवाद, यहाँ पर विजय जी हमारा साथ दे रहे हैं। ऑल राइट, और विजय जी, मैं हूँ सुमी और आपके साथ यहाँ पर रेडियो मनोरंजन पर हम सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में साथ दे रहे हैं। इनफैक्ट लावारिस फिल्म का जो गाना आपने मांगा है वो किशोरदा की आवाज़ में नहीं है, वो गाना किसी और गायक की आवाज़ में है। तो ये जो लावारिस फिल्म का गाना हम चलाने वाले हैं, अपनी तो जैसे तैसे ये किशोरदा की आवाज़ में है, तो इसको हम आपके नाम करते हैं और आपकी ओर से हमारे सभी सुनने वालों के नाम जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं।

0: सुहाना सफर।
1: चिड़िया पर देखते ही देखते दोपहर के 1:50 ऑलरेडी होने को है। मंगलवार 13th of October और यहाँ पर गानों का कारवा जारी है। बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो है किशोरदा के गाए हुए गानों की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में इस समय अनीता जी फ्लिक ऑफ लक से हमारा साथ दे रही है, दुर्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही है सभी दोस्तों को, सभी परिवार को और रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम को भी। थैंक यू सो मच अनीता जी। और उन्होंने कहा कि वो कुवारा बाप फिल्म का जो तराना है जय भोले, ये गाना वो सुनना चाहती है और सभी किशोरदा के फैंस के नाम इस गाने को वो डेडिकेट कर रही है।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और डियर लिसनर्स, इसी के साथ हम बढ़ने वाले हैं 2 बजे के समाचार की ओर. आप हमारे साथ जुड़े रहे एंड आफ्टर द समाचार हमारी आपकी मुलाकात होगी इन द थर्ड आवर ऑफ सुहाना सफ़र ऑन रेडियो मनोरंजन.

0: टू बी एम। सुनते हैं देश विदेश की खबरें। अदिति से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। सबसे पहले एलोजीतोमा की स्थिति। प्रेस को संबोधित करते हुए आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने ये अच्छी खबर सुनाई कि एलोजी कॉरपोरेशन कल सफल रहा और उसकी हालत में सुधार हुआ है। 7 घंटों की जटिल सर्जरी के अंतर्गत उसके स्पाइन से गोली निकाली जा सकी और कुछ घंटों में उसे होश भी आया। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार उसके हाथ पैर सब सही सलामत हैं और उसने आंखें भी खोली हैं। इस प्रेस सम्मेलन में मौजूद डॉक्टर उमेश श्यामलाल ने बताया कि इस ऑपरेशन के लिए भारतीय टीम एक पूरा ऑपरेशन थिएटर साथ लाई है। इस टीम में ENT स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, एनेस्थेसिस्ट, नर्सेस आदि सभी शामिल हैं। देश में कानून और व्यवस्था से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज दिन के 2:30 बजे से मंत्रिमंडल की एक आपातकालीन बैठक लगेगी। इसके अंतर्गत देश में शांति बहाली के लिए सभी संबद्ध पक्षों की जिम्मेदारी को लेकर कोऑर्डिनेशन पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक बार फिर एकता और स्थिरता बनाए रखने की मांग की है। कल रात देश के कई इलाकों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए, पहिए जलाए गए और पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई। बाघली और अबेकोंबी पुलिस स्टेशनों पर कॉकटेल मोलोटोव फेंके गए और तोड़फोड़ की गई। पुलिस और SMF की टीमें संबद्ध इलाकों पर तैनात हुई हैं। पुलिस कम्युनिकेशन सेल के अनुसार कुछ इलाकों में अभी भी अस्थिरता बनी हुई है और स्थिति संभालने के लिए कार्रवाइयां चलाई जा रही हैं। तोड़फोड़ मचाने और अस्थिरता फैलाने के लिए करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 2 नाबालिग बताए जाते हैं। इन लोगों को आज अदालत में पेश किया जा रहा है। विदेश की खबर नियमा के साथ।
2: अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक मनोरंजन पार्क में एक रोलर कोस्टर को लेकर पेश आई घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। जानकारियों के अनुसार रोलर कोस्टर एक जगह पर फंस गया, जिससे लोगों को निकलने के लिए कर्मचारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा।
1: ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
3: Your news on MBC Play and MBC.MU.
4: You're listening to RM3 Radio Man.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन

0: सफर
1: मंगलवार 13 अक्टूबर सुहाना सफर का ये थर्ड आवर है और आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। और चलिए, यहाँ पर माता रानी के नाम से हमने तीसरे घंटे की शुरुआत की है और यहाँ पर खूबसूरत गानों का ये जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं। आज किशोरदा की बरसी है और बहुत सारे किशोरदा के फैंस उनके गाए हुए गानों की फरमाइश कर रहे हैं। और यहाँ पर बेनाम फिल्म का जो अगला तराना है ये जाता है रोशनो के आपादू फैमिलीज के नाम, जो आज भी बड़े प्यार से हमारे साथ कनेक्टेड है। ये गाना जाता है दारेन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लोवेशा, सभी आपादू फैमिलीज के नाम हमेशा हमें सुनते हैं, हमेशा हमारे सभी प्रोग्राम में जुड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए दिल की बात इन गानों के जरिए यहाँ पर ऑलरेडी बयां हो रही है। गाने ही इतने कमाल के हैं कि क्या कहें। 2:22 ऑलरेडी यहाँ पर हो रहे हैं। वी आर इन द थर्ड आवर ऑफ सुहाना सफर ऑन रेडियो मनोरंजन। और यहाँ पर मानिता जी फ्रांस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। कह रही किशोर दा के गाने जितने भी चल रहे हैं सभी बड़े कमाल के हैं, और चलते चलते फिल्म का गाना उन्होंने मांगा है। और साथ ही वो हमारे सभी लिसनर्स को नवरात्रि के इस पावन पर्व की शुभकामनाएँ दे रही हैं, बेस्ट विशेस दे रही है। और ये गाना खासकर मानिता जी आपके नाम और आपके सभी फैमिली के नाम जो यहाँ पर मॉरिशस में हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जी हाँ, अगर तुम ना होते आप है तो हम है, आप है तो ये प्रोग्राम है और आपके डेडिकेशन और फरमाइशों के जरिए जो है सुहाना सफर ये प्रोग्राम चलता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत गानों की रिक्वेस्ट करने के लिए। अगले तराने की ओर हम बढ़ते हैं। इस समय बड़े ही प्यार से परी और माधुरी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रही है कि जय माता दी और हमें भूलना नहीं। बिल्कुल, आप लोगों को हम कैसे भूल सकते हैं भला। तो चलिए, किशोरदा की आवाज़ में ये तराना आप दोनों के लिए चल पड़ा।

0: सुहाना सफर।
1: यकीनन जिंदगी के इस सफर में कई मुकाम ऐसे होते हैं, कई पल ऐसे होते हैं जो बीत जाते हैं तो याद नहीं, लौट कर नहीं आते हैं, लेकिन यादों के ज़रिए हमारे दिल में हमेशा रहते हैं। और यादों का सिलसिला कहे या सुहाना सफ़र ये प्रोग्राम कहे, जहाँ पर पुराने गानों को हमें दोबारा या बार बार सुनने का मौका मिलता है और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, और यहाँ पर आप भी बड़े प्यार से जुड़ते हैं, इन सभी गानों को इंजॉय कर रहे हैं। ऐसे में एक और तराना हो जाए किशोरदा की आवाज़ में, किशोरदा के सभी फैंस के नाम।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: तो चलिए इसी के साथ हम सुहाना सफर इस प्रोग्राम के अंत तक आ गए हैं और चलिए आप सबका प्यार भरा साथ इस 3 घंटे के प्रोग्राम के अंतर्गत मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुहाना सफर का जो सफ़र है क्रांति फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ हम ख़त्म करते हैं। आप जहाँ रहे सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखिए और बिना वजह चारों ओर बहुत सारी अफवाहें फैलती है उन अफवाहों पर ध्यान न दे, मतलब कि ट्रस्टेड सोर्सेज से ही जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उस पर आप गौर करें और जहाँ रहे सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी। 3 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा प्रोग्राम जो सवेरे चला था उसी का रिब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे और हमारी आपकी मुलाकात कल सवेरे होगी रेडियो मॉरिशस पर। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को और क्रांति फिल्म के इस गाने के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। माँ दुर्गा पर आधारित, माँ जो है सबका कल्याण करे। नमस्कार आप सभी को।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one.
3: Exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। देश में कानून और व्यवस्था से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज दिन के 2:30 बजे से मंत्रिमंडल की एक आपातकालीन बैठक लग रही है। इसके अंतर्गत देश में शांति बहाली के लिए सभी संबद्ध पक्षों की जिम्मेदारी को लेकर कोऑर्डिनेशन पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक बार फिर एकता और स्थिरता बनाए रखने की मांग की है। कोलंबिया घटना के बारे में डीपीपी दफ्तर ने कल जारी कम्युनिके में सूचित किया कि पुलिस को रोजिल जिला अदालत में एक नई प्रोविजनल चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें वैन चालक तिरवासेन सुबायन को डराने धमकाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करने और एलोजी तोमा को अनजाने में शारीरिक चोट पहुंचाने का नया आरोप शामिल है। कम्युनिके के अनुसार इन नए आरोपों के लिए अलग अलग सजाएं हो सकती हैं, जिनमें 15 साल तक कैद की सजा शामिल है। डीपीपी दफ्तर ने यह भी कहा कि घटना के समय मौजूद अन्य पुलिस अफसरों और एसएमएफ के सदस्यों की जांच की सिफारिश की है। इस कदम का मकसद ये पता लगाना है कि क्या वे किसी खतरे में फंसे लोग व्यक्ति की मदद न करने के लिए दोषी हैं। चूंकि जांच अभी शुरुआती स्तर पर है, इसलिए डीपीपी का कहना है कि सबूतों की जांच जारी रखी जाएगी ताकि तय किया जा सके कि और प्रोविजनल आरोप लगाए जाने चाहिए या नहीं। अगर जांच में कोई प्रगति नहीं होती है तो डीपीपी दफ्तर रोजिल जिला अदालत में न्यायिक जाँच की मांग करने पर विचार करेगा। और एलोजी तोमा की स्थिति को लेकर कुछ अच्छी खबर। प्रेस को संबोधित करते हुए आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने यह अच्छी खबर सुनाई कि एलोजी का ऑपरेशन कल सफल रहा है और उसकी हालत में सुधार हुआ है। 7 घंटों की जटिल सर्जरी के अंतर्गत उसकी स्पाइन से गोली निकाली जा सकी और कुछ घंटे में उसे होश भी आया। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार उसके हाथ और पैर सभी सलामत हैं और उसने अपनी आंखें भी खोली हैं। इस प्रेस सम्मेलन में मौजूद डॉक्टर उमेश शामलोल ने बताया कि इस ऑपरेशन के लिए भारतीय टीम ने एक पूरा ऑपरेशन थिएटर साथ लाया है। इस टीम में ENT स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, एनेस्थेसिस्ट और नर्स आदि शामिल हैं। विदेश की खबर नियर्मा के साथ।
5: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर बनी स्वीकृति के कुछ घंटे बाद ही रूसी ताकतों ने यूक्रेन के पावर प्लांट पर मिसाइल हमले किए। इसके चलते पश्चिमी यूक्रेन के कई इलाके बिजली आपूर्ति से वंचित रहे।
4: ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
6: Your news on MBC Play and MBC.mu.
0: Center 95.5. North, South 95.6. 95.6. East, West 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

श्रोताओं, जीवन में शांति का बड़ा ही महत्व है, जीवन में अपनेपन का बड़ा ही महत्व है। और जब हम जीवन की बात करते हैं तो शांति सिर्फ हमारे जीवन में नहीं बल्कि समाज में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जब एक व्यक्ति समाज में शांत चित्त से हर एक कार्य को करता है तो उनके बीच में संवाद और समझौता बढ़ जाता है। ऐसे ही लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, अपना जो है एक दूसरे के प्रति सम्मान को व्यक्त कर पाते हैं। शांति के बिना सामाजिक संघर्ष और तनाव बढ़ता है जो सभी को प्रभावित करता है। और जिस प्रकार घर में एक व्यक्ति अगर किसी कारणवश बीमार होता है तो किस तरह से घर के हर एक सदस्य उनके लिए चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं कि क्या हुआ, कब ठीक होंगे, ईश्वर जो है जल्दी से इन्हें ठीक कर दे। उसी प्रकार समाज में भी अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है तो उसका सीधा असर हर एक व्यक्ति पर पड़ता है। और मानवता की बात करें तो मानवता की एकता ही इस दुनिया का एक मूल मंत्र है। जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, अपने भेदभाव को भूलकर एक दूसरे के विकास में एक दूसरे का योगदान देते हैं और एकता से समाज में एक नई ऊर्जा आती है, हर एक व्यक्ति आगे बढ़ने का जो है इससे मौका मिलता है। क्योंकि जब चारों ओर शांति होती है, जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो एक दूसरे की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम तो अकेले रह नहीं सकते हैं, हमें एक दूसरे पर जीने के लिए निर्भर रहना पड़ता है किसी न किसी वजह से। जैसे परिवार में अगर माता पिता नहीं हैं तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, परिवार में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो बच्चों को अच्छे संस्कार कहाँ से मिलेंगे, अगर परिवार में भला भरा पूरा परिवार नहीं है तो अकेलेपन का एहसास होता है। कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता है, वो अकेला रहता है तो उसे परिवार की कमी महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के साथ की आवश्यकता हमेशा से पड़ती है। और इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें एक दूसरे के साथ की आवश्यकता पड़ती ही है। जब हम एक दूसरे का साथ मिलकर रहते हैं तो हमारे बीच भावनाएँ जो है और भी मजबूत होती है और इससे समाज में एकता बनती है। और एकता जब समाज में होती है तो एक दूसरे को लोगों से जोड़ती है और अकेलेपन से हमें दूर करती है, उदासी हम कम महसूस करते हैं। कहते हैं ना कि खुशी जो है बांटने से हज़ार गुना और बढ़ती है और ये जो दुख है बांटने से कम होता है। तो इस बात को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और शांति और एकता से ही मानवता का विकास होता है। जब लोग एक दूसरे के साथ समर्थन करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, सकारात्मक चीज़ों के लिए, अच्छे विचारों के लिए, तो वो समर्थन कहीं ना कहीं आगे चलकर सफलता में परिवर्तित हो जाता है और नए विचार, नई दिशा मिलती है विकास करने के लिए। कदम जैसे ना, एक व्यक्ति एक भलाई का कदम आगे बढ़ाता है तो उसको देखकर और भी लोग प्रेरित होते हैं अच्छे कार्य करने के लिए। इस प्रकार विकास सिर्फ व्यक्ति का नहीं बल्कि परिवार का होता है, समाज का होता है और देश का भी होता है। और कहीं ना कहीं विकास की बात करें तो एक समाज के विकास में हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। एक देश के विकास में हर एक देश के नागरिक को अपना योगदान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि वो जहाँ रहता है, वो जो भी जीवन व्यतीत कर रहा है, जिस प्रकार से भी अपने जीवन को आगे ले जा रहा है, उसके जीवन में शांति हो, उसकी मन की स्थिति अच्छी हो, आसपास का वातावरण अच्छा हो। और कहीं ना कहीं ये हमें एक अच्छे मानवीय गुण को समझाने में भी हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। क्योंकि इन्हीं गुणों के चलते तो हमें जो है लोग जानते हैं। एक व्यक्ति की लोग प्रशंसा कब करते हैं, एक व्यक्ति को धन दौलत के लिए नहीं जाना जाता है। क्योंकि धन दौलत और पैसों की बात करें तो ये समय के साथ आज है, शायद कल नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का अच्छा आचरण जो होता है, अगर वो व्यक्ति के जाने के बाद भी उसे उस अच्छी बात के लिए याद किया जाता है। तो यदि इन्हीं बातों पर आप भी अपने विचार बांटना चाहते हैं तो बेशक आपका स्वागत है 402-808-5 पर। और ज़िंदगी बिना प्यार के हमारी अधूरी है, बिना अपनेपन के अधूरी है, बिना मन के शांति की अधूरी है। तो चलिए यहाँ पर एक और गीत जोड़ते हैं।

जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे। इस प्यार की अगर हम बात करें तो प्यार जीवन के हर पहलू में बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर नफरत के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती है। प्यार जो होता है लोगों के मन को शांत करता है, प्यार जो होता है लोगों के मन में अच्छी भावनाओं को आने देता है, प्यार जो होता है हमें सब कुछ अच्छा देखने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, प्यार जो होता है ये हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है, प्यार जो होता है वो हमारे संबंधों को मजबूत करता है, प्यार जो होता है हमारे विश्वास को और भी गहरा करता है, और यही प्रेम और अपनापन हम अपने देवी देवताओं के प्रति भी जो है व्यक्त करते हैं, है ना। क्योंकि प्यार के बिना जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं होता है, प्यार के बिना जीवन में सब कुछ जो है अधूरा होता है, और जीवन में अगर कुछ अधूरा होता है तो फिर जीवन की पूर्णता को किस तरह से हम अनुभूति कर पाएंगे, किस तरह से महसूस कर पाएंगे। और प्यार की इस भावना की बात करें तो इस दुनिया में अच्छी भावनाओं की बहुत ही आवश्यकता है। लोग एक दूसरे के दुख और सुख में एक दूसरे को समझे ये बहुत आवश्यक होता है। जब लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो वे एक दूसरे से जो है अपने प्रेम को व्यक्त कर पाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास होता है उसे व्यक्त कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं जब एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है तो ये समाज को, परिवार को और देश को और भी मजबूत करता है। शांति और एकता का समर्थन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को ये शांति का पाठ पढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे बच्चे जो हमारा आने वाला कल होते हैं, हमारे देश का भविष्य होते हैं, समाज के निर्माण में, समाज की प्रगति के लिए उनका बड़ा योगदान होता है। जैसे जैसे वो बड़े होते तो बच्चों के बीच में ये समझ, ये शांति, ये भाईचारे की भावना होना बहुत आवश्यक होता है। कहते हैं शांति और एकता जो है ये एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, और वैसे ही हम भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ना। एकता के बिना समाज में भेदभाव बढ़ जाता है, द्वेष बढ़ जाता है, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर विकास नहीं हो पाता है, हम प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो फिर इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के दुख में सहयोगी बने, उनके दुख को कम करने का प्रयास करें, और सुख है तो उस सुख को बांटने का प्रयास करें। और कहीं ना कहीं जो है जीवन की उलझने तो सभी को है, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि वो पूरी तरह से सुखी है या उसके जीवन में सब कुछ है। कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ सबके लिए छूट ही जाता है, लेकिन छूटने का मतलब ये नहीं है कि हमें जीवन में कुछ नहीं मिला,

फूटने का मतलब ये भी होता है कि शायद अब हमें जीवन में कुछ नया सीखना चाहिए और हर बदलाव अच्छाई के लिए हो, हर बदलाव जो है सकारात्मकता लाए हमारे जीवन में और हर बदलाव जो है हमें प्रगति की ओर ले जाए। तो ऐसे बदलाव को हमें सदैव चुनना चाहिए, क्योंकि जो भी परिवर्तन हमारे जीवन में होता है वो कहीं ना कहीं विकास के लिए होता है, नई चीज़ों को जानने के लिए होता है, नई चीज़ों को समझने के लिए होता है। और एकता के बिना समाज अधूरा होता है, क्योंकि विकास नहीं होगा, प्रगति नहीं होगी, तो फिर लोगों में आपसी मनमुटाव तो बढ़ जाएगा ना। तो मनमुटाव को कम करने के लिए एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बहुत आवश्यक होती है, और कभी कभार यही चीज़ें जो है समाज को एक साथ लाती है, और इसलिए एकता और शांति का जीवन में होना बहुत आवश्यक होता है। मानवता को एक नई दिशा देने के लिए हमें एक दूसरे का समर्थन अवश्य करना चाहिए, लेकिन ये जो समर्थन है सदैव सकारात्मक चीज़ों के लिए हो, इसका भी ध्यान देना होता है। कभी कभार हम अनसुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आजकल तो हम जो है AI के युग में जी रहे हैं, सोशल मीडिया पर चारों ओर एक दिन में न जाने कितनी हजारों खबरें हम सुनते हैं, देखते हैं, और कभी कभार ऐसी ऐसी चीज़ों पर विश्वास करने लगते हैं जो सत्य है ही नहीं। कभी कभार जो इन्फॉर्मेशन हमें सोशल मीडिया के द्वारा मिलती है उसमें कितनी सच्चाई है इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है, इस पर विश्वास करना बहुत ही कठिन हो जाता है। और कभी कभी अंधविश्वास के चलते कहीं हमसे कोई गलत कार्य न हो जाए, कहीं हम कोई गलत कदम न उठा ले, और कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत होता है तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। तो जिन भी चीज़ों को हम देख रहे होते हैं अपने आसपास, या सुन रहे होते हैं, या सोशल मीडिया के ज़रिए इन इन्फॉर्मेशन को जब हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे भीतर ये चेतना होनी चाहिए कि ये सारे जो चीज़ें हम देख रहे हैं या ये सारी खबरें जो हमें मिल रहे हैं इसमें सच्चाई क्या है। जो भी सोर्सेज हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या वो सोर्सेज पर हम विश्वास कर सकते हैं, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या हम इनकी बातों पर यकीन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है नाप तोल कर हमें जीवन में अपने जो है फैसलों को करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि सही समय पर सही खबरें सब तक पहुँचे, ताकि हर एक व्यक्ति को सच्चाई की जानकारी हो और तथ्यों के साथ उसे प्रमाण भी मिले कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके पीछे सच्चाई क्या है। और मानवता को नई दिशा प्रदान करने के लिए कहीं ना कहीं समाज में एकजुट होकर हमें रहना बहुत आवश्यक होता है। हम जो है सामाजिक न्याय पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, अपने सम्मान अधिकारों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं किसी भी बात का हल नहीं है। बात का हल सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन से होता है, वार्तालाप से होता है, और इनकी अगर हम बात करें तो ये सारे हमारे जीवन में एक नई दिशा प्रदान करते हैं। क्योंकि कभी कभार कहते हैं ना कि अच्छी संगत का होना बहुत आवश्यक होता है जीवन में, अच्छी संगति का होना बहुत आवश्यक होता है, अच्छे लोगों के साथ मिलजुल कर बड़े बुज़ुर्गों की बातों को सुनना चाहिए, बड़े बुज़ुर्गों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनके पास जीवन का अनुभव होता है और इन्हीं अनुभव के चलते हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और शांति और एकता के ज़रिए ही सुख और समृद्धि आती है। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो एक दूसरे के प्रति विश्वास को बताते हैं, अपने आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने का कहीं ना कहीं शांति और एकता ही एक रास्ता होता है, और इसी प्रकार से जो है समाज में खुशहाली आती है।

0: सी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: मुझे माफ कर दो भगवान, माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ पत्थर समझा था, पत्थर। मैं रास्ते से भटक गया था भगवान, भूल गया था कि तुम इस तरह भक्तों की परीक्षा लेते हो। पांडवों को दुख भूल गया, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा भूल गया,

0: चिड़िया की राम का रूप लेकर तुम खुद 14 बरस वनवास काट चुके हो।
1: आज का ये दिन
2: मंगलवार 13 अक्टूबर को NBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म नास्तिक 1983 की मूवी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जी पर फिल्माई गई नास्तिक।
1: पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल।
2: NBC TV प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
3: मेरी जागी तो है ये, तू क्या जाने, यही तो एक सूट है जो हर महीने की पहली तारीख को मेरी गरीबी छुपा लेता है। एक एक पैसा बचा कर बड़ी मुश्किल से सिलवाया ये मैंने। अरे ये सूट पहनकर राजा सचमुच का राजा लगता है। हाँ।
4: रहे झोपड़ों में, ख्वाब देखे महलों के।
3: अरे अच्छे दिनों के ख्वाब नहीं देखेंगे तो गरीब घुट घुट के मर जाएंगे।
2: मंगलवार 13 अक्टूबर को NBC 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म मोहब्बत की आरजू 1994 की ये मूवी ऋषि कपूर और डैनी डेंजोंगपा पर फिल्माई गई मोहब्बत की आरजू।

चलिए आज की चर्चा इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, आप सभी के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जीवन में शांति के महत्व पर बात कर रहे हैं। शांति कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है। खुशी और शांति एक दूसरे के गहरे स्वरूप है। कई बार हम सोचते हैं कि जब हमारे पास अच्छी नौकरी होगी, अपना घर होगा, बैंक बैलेंस होगा, पैसा होगा, समाज में सम्मान होगा, तब जाकर हम खुश रहेंगे। लेकिन जीवन में कभी कभार कई व्यक्तियाँ ऐसे होते हैं या कई अनुभव हमें ऐसे होते हैं कि कभी कभार बहुत लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन जीवन में शांति नहीं होती है, खुशी नहीं होती है। क्योंकि शांति और खुशी की यदि हम बात करते हैं तो ये धन दौलत से नापी नहीं जाती है। ये मन की एक ऐसी स्थिति होती है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जीवन में हम कई बार ऐसी खुशियों से दूर होते जाते हैं। जीवन में कभी कभार एक दूसरे की देखा देखी के चलते हम अपने गुणों को पहचान नहीं पाते हैं। एक दूसरे के जैसा बनने के चलते हम अपने भीतर जो शक्ति है उसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं। और जब ईश्वर ने हम सबको बनाया है, जब भगवान ने हम सबको बनाया है, तो सब में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ अलग ज़रूर बनाया है। हर एक व्यक्ति की कमज़ोरियाँ भी होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी शक्तियाँ भी होती है। और समय के साथ साथ हमें अपनी कमज़ोरियों को भी समझना चाहिए और हमें समय के साथ अपनी शक्तियों को भी समझना चाहिए। लेकिन कमज़ोरियों को जब हम समझते हैं उसे कमी के रूप में नहीं देखना चाहिए, उन कमज़ोरियों को ताकत बनाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। हम अपने लाइफ को बेहतर बनाने का जो प्रयास है ये हर रोज़ करते हैं। हर रोज़ हम उठते हैं, अपने कामकाज पर जाते हैं, अपने दायित्व को निभाते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। और यही अच्छे कर्म जो है हमारे भविष्य को एक अच्छी दिशा प्रदान करता है। और जो शक्तियाँ हैं कहीं ना कहीं उन शक्तियों का दुरुपयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। कई लोगों के लिए बल शक्ति की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक होती है कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, सम्मान है, तो इसके वजह से मैं जीवन में बहुत शक्तिशाली हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं शक्ति ये नहीं है कि मेरे पास कितना है, शक्ति ये है कि मैं किसके लिए क्या कर सकता हूँ। शक्ति ये है कि मेरे भीतर सामने वाले व्यक्ति के प्रति कितना सम्मान है, मैं अपने पड़ोसी को कितना समझ पाता हूँ, मैं उसके दुख में शामिल हो पाता हूँ या नहीं, मैं कहीं ना कहीं अपने अच्छे कर्म के द्वारा समाज में अपना योगदान दे पा रहा हूँ या नहीं, यह अपने आप में शक्ति होती है। क्योंकि शक्ति का प्रदर्शन जो है करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर हम अच्छी चीज़ों को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आचरण में उन अच्छी चीज़ों को दिखाई देना प्रत्यक्ष रूप से हर कोई देख पाता है, हर कोई समझ पाता है। और आज के आधुनिक युग की बात करें तो आज का युग तकनीकी युग है, आज का युग तेज़ी से बढ़ रहा है, ये जीवन शैली का युग है। अभी पलक झपकते ही

नो कुछ नया आविष्कार हो जाता है, पलक झपकते ही कुछ नई चीज़ आ जाती है। मोबाइल बोलिए, फ़ोन बोलिए, सोशल मीडिया बोलिए, इंटरनेट बोलिए, ये सब जो है हमारे जीवन का इस तरह से हिस्सा बन गए हैं कि क्या कहें। लेकिन कभी कभार यही चीज़ें हमारे मन को अशांत भी करती हैं, क्योंकि इन सभी पर हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, हमारे बच्चों पर होता है, हमारे परिवार के सदस्यों पर होता है। और अगर परिवार पर इन सब का प्रभाव पड़ रहा है तो हम सोच ही सकते हैं कि समाज पर इन सब चीज़ों का प्रभाव क्या पड़ता है। इसलिए हमें जो है ऑब्वियसली आज के समय में टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना एक आवश्यकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव कर रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी को हमारे जीवन को नियंत्रित करने नहीं देना चाहिए। हमारे जीवन की जो भी पहलू है, हमारे जीवन के जो भी चीज़ें हैं, उस पर नियंत्रण हमारा होना चाहिए, हमारे सकारात्मक विचारों का होना चाहिए, हमारे सकारात्मक आचरण का होना चाहिए, हमारे अच्छे जो है बर्ताव का होना चाहिए। किसी और की, कोई और हमें प्रभावित करे, कोई और हमारे जीवन को चलाए, ये ठीक नहीं है। हाँ, हम लोगों से प्रेरित अवश्य हो सकते हैं। कभी कभार हम जीवन में फंस जाते हैं, हमें किसी समस्या का हल नहीं मिलता है, तो हम अपने माता पिता के पास जाते हैं, हम अपने गुरुजनों के पास जाते हैं, या एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमारे मेंटर होते हैं, जिन पर हम विश्वास कर पाते हैं, है ना। क्योंकि इन सब के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक होता है, जो हमारे जीवन को जो है सकारात्मकता से प्रभावित करे, अच्छे विचारों के द्वारा या उनके अच्छे कर्मों से हम प्रभावित हो। क्योंकि बहुत कुछ हमारे आसपास चल रहा होता है जिसे सोच कर या जिसके बारे में सोच विचार कर उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता ही है, लेकिन किस तरह से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे ही बस में होता है। आज की

0: जाना लगा रहेगा, दुख आएगा, सुख आएगा। सुख दुख जो है जीवन में आते जाते रहते हैं, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है इस पर हमारा नियंत्रण अवश्य होता है।
1: आज की चर्चा।
0: श्रोताओं, हम यही कह सकते हैं कि शांति जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मानवता के अस्तित्व की एक गहरी ज़रूरत है ये। पैसा खर्च हो जाता है, पद प्रसिद्धि जो है समय के साथ बदल सकते हैं, सुख सुविधाएं आज है शायद कल नहीं हो, लेकिन शांत मन हमेशा हमें हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस शांति को जीवन में बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शांति सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि जीने की एक कला है। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उसने जीवन की अनेक कठिनाइयों के बीच खुश रहना सीख लिया। और कहीं ना कहीं अफवाहों से हमें बचना चाहिए, फेक न्यूज़ से हमें बचना चाहिए, ऐसी खबरों से हमें बचना चाहिए जो हमारे भीतर, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे देश में असंतुलन पैदा करती है। कहीं ना कहीं हमें उन खबरों पर विश्वास करना चाहिए जो ऐसे सोर्सेस से आता है जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति ये जो प्रेम और सम्मान की भावना है, इसे सदा बनाए रखना चाहिए। तो इसी के साथ आज की चर्चा, ये जो कार्यक्रम है, ये समाप्त होने को चला। आपने इतने प्रेम से आज भी हमारा साथ दिया, इसके लिए आभार। आप सभी को शुभ दिन हम कहेंगे। 10 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार, और उसके बाद रत्ना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे भक्ति धारा। इस कार्यक्रम को हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से। आज की

0: 94.6, 98.2। आप सुन रहे हैं RM3।
1: आपके सितारे
2: मंगलवार 13 अक्टूबर रेडियो मनोरंजन पर आप सभी सुनने वालों का, आप सभी लिसनर्स का स्वागत हम करते हैं। मैं हूँ सुमिता और आपके सितारे इस प्रोग्राम को लेकर हम आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए अभी से लेकर शाम के 5:50 तक। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह अपने फेवरेट रेडियो रेडियो मनोरंजन से जुड़ चुके हैं। ऐसे आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे सिंगर के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे बैक सिंगर के बारे में बात करेंगे जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गानों के जरिए हम आज भी उन्हें याद करते रहते हैं। आज ही की तारीख 13 अक्टूबर 1987 को बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर किशोर दा का जो है निधन हुआ था। तो आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है एक ट्रिब्यूट होगा किशोर दा जी को, लेकिन नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है तो माता रानी के नाम से कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे और फिर किशोरदा के जीवन पर कुछ बातें करेंगे और उनके गाए हुए खूबसूरत गाने आपके लिए चलाएंगे। तो चलिए माँ का नाम लेते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

0: आपके सितारे।
1: तो दोस्तों, आपके सितारे ये प्रोग्राम है, आपका प्यार भरा साथ हमें मिलेगा ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और भारतीय सिनेमा के इतिहास में कहते हैं कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो समय की सीमाओं को पार कर जाती है। किशोर कुमार जी उन्हीं महान फनकारों में से थे जो आज ही की तारीख 13 अक्टूबर 1987 को चल बसे थे। अपनी अनोखी आवाज़, जिंदा दिली और बेमिसाल प्रतिभा से उन्होंने अपने चाहने वालों का दिल कई दशकों तक जीता है। वो सिर्फ गायक ही नहीं थे बल्कि एक ऐसे कलाकार थे जो खुशी हो, दर्द हो, मोहब्बत हो, जिंदगी हो, हर नगमे को इस तरह से गुनगुनाते थे कि क्या कहे। और गायकी के साथ साथ ये एक्टर भी थे। जी हाँ, तो चलिए आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं किशोरदा की आवाज़ के साथ।

0: आपके सितारे।
1: तो दोस्तों, यह है आपके सितारे प्रोग्राम। यू आर लिसनिंग ऑन रेडियो मनोरंजन। किशोर कुमार जी का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खांडवा में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे और उनकी माँ का नाम गौरी देवी था। वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखते थे जहाँ कला और सिनेमा का गहरा प्रभाव था। उनके बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे, जबकि अनूप कुमार उनके भाई जो है वो भी फिल्मों से जुड़े थे। बचपन से ही किशोरदा को गाने और संगीत में बड़ी ही दिलचस्पी थी। उन्होंने किसी पारंपरिक गायकी की सीमा में खुद को बांधकर नहीं रखा और अपनी एक अलग पहचान बनाई।

0: आपके सितारे।
1: तो दोस्तों, ये है आपके सितारे प्रोग्राम। और कहते हैं बहुत कम लोग जानते हैं कि किशोर दा ने अपने करियर की शुरुआत एक प्लेबैक सिंगर के रूप में नहीं की थी, बल्कि एक अभिनेता के रूप में की थी। उन्होंने कुछ गिनी चुनी फिल्में ही की है बतौर एक्टर, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी कमाल की रही है कि क्या कहे। उन्होंने शुरुआत की थी शिकारी इस फिल्म से, जो 1946 में आई थी, जिसमें उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ काम किया था। बाद में आंदोलन, नौकरी, बंदी और चलती का नाम गाड़ी एक ऐसी फिल्म थी जहां पर इनकी कॉमिक टाइमिंग को लोगों ने बहुत ही सराहा था। जो कॉमिक टाइमिंग का यानी कि कॉमेडी रोल का जो अंदाज था, वो आज भी लोग देखना बहुत ही पसंद करते हैं।

0: के सितारे।
1: तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि किशोर दा के गाए हुए गानों को आप ज़रूर यहाँ पर एंजॉय कर रहे होंगे। किशोर कुमार जी की बात करें तो प्लेबैक सिंगिंग में उनको मौका मिला जिद्दी फिल्म के गानों को गाकर, लेकिन उनकी करियर में बड़ा मोड़ आया आराधना इस फिल्म से, जिससे रातों रात वो सभी के दिलों पर छा गए। इस फिल्म के संगीतकार SD बर्मन साहब थे और उनके बेटे RD बर्मन साहब भी जुड़े थे, जिन्हें पंचम दा के नाम से हम जानते थे। और वो दौर किशोर दा की गायकी का दौर था, क्योंकि इतने खूबसूरत गाने इतने बेहतरीन फिल्मों के लिए उन्होंने गाए हैं और राजेश खन्ना साहब की वो आवाज़ बन गए थे, रूप तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी, कोरा कागज़ जैसी फिल्मों के साथ।

0: आपके सितारे।
1: चलिए रेडियो मनोरंजन पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये टाइम ऐसा होता है जहाँ पर लोग जो है काम से लौट रहे होते हैं, घर पर थोड़ा सा आराम करते करते हमारा साथ देते हैं, तो जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके सितारे ये जो प्रोग्राम है ये किशोर दा पर आधारित है और चलिए इस अगले खूबसूरत गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।

0: के सितारे।
1: दोस्तों, किशोरदा की बात करें तो किशोर कुमार जी की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी वर्सिटैलिटी, यानी कि हर तरह के गीत को वो अपने अंदाज में गाते थे। वो रोमांटिक हो, सैड हो, कॉमेडी हो, फिलोसॉफिकल हो या कोई जोश से भरा गाना क्यों ना हो, उनकी गायकी में यूडलिंग का खास इस्तेमाल उन्होंने किया है, जिसके लिए लोगों ने इन्हें बहुत पसंद भी किया है। उन्होंने अपनी आवाज़ में कई तरह के जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं और लोगों ने इन सबको भी बहुत ही सराहा है। उनके लिए गाना केवल सुर और ताल का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं को जीने का और सुनने वालों के दिलों तक पहुँचाने का एक अलग ही अनोखा अंदाज था।

0: listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: चले यहाँ पर कब हम देखते ही देखते आपके सितारे इस प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ गए, हमें पता ही नहीं चला है ना, गाने ही इतने कमाल के हैं क्या कहे। तो चलिए ऐसे में जोड़ते हैं ये अगला

0: के सितारे।
1: चलिए दोस्तों, आप हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। किशोरदा की आवाज की बात करें तो बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए, बड़े बड़े सितारों के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी है। राजेश खन्ना के लिए उन्होंने आराधना, अमर प्रेम, कटी पतंग और आनंद जैसी फिल्मों में गाने गाकर उस दौर में सबको पॉपुलर किया। वहीं पर अमिताभ बच्चन जी के लिए डॉन, नमक हलाल, शराबी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों के जो गाने हैं इन्होंने गाए और काफ़ी लोकप्रिय हुए। वहीं पर देवानंद, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ऋषि कपूर, संजीव कुमार जैसे अभिनेताओं के लिए भी इन्होंने आवाज़ दी है। हर अभिनेता के व्यक्तित्व के अनुसार, हर अभिनेता के पर्सनैलिटी के अनुसार इन्होंने अपनी आवाज़ को ढाला है और कहीं ना कहीं उस एक्टर की आवाज़ ये बन गई।

0: आपके सितारे।
1: चले यहाँ पर खूबसूरत गीतों का ये जो सिलसिला आपके सितारे इस प्रोग्राम में जारी है। किशोर कुमार जी ने अपने समय के महान गायकों के साथ यादगार ड्यूएट्स भी गाए हैं। ड्यूएट्स की बात करें तो काफी किशोरदा के ड्यूएट्स जो है वो बहुत ही पॉपुलर हुए थे और आज भी हम इन्हें सुनते हैं। लता जी के साथ तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, गाता रहे मेरा दिल, कोरा कागज था ये मन मेरा। आशा जी के साथ इन्होंने काफी गाने गाए हैं जैसे कि ओ साथी चल, और साथ में रफ़ी साहब के साथ भी इन्होंने ताल से ताल मिलाकर काफ़ी बेहतरीन यादगार गाने गाए हैं। कई दशकों तक इनकी आवाज़ जो है हिंदी सिनेमा में गूंजती रही है और आगे भी जो है गूंजती रहेगी।

0: आपके सितारे।
1: तो चलिए यहाँ पर किशोरदा की बात करें तो उनकी प्रतिभा जो है सिर्फ गायकी और अभिनय तक सीमित नहीं रही है दोस्तों, वो गीतकार और संगीतकार भी रहे हैं, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे। झुमरू, दूर गगन की छाओ में, दूर का राही जैसी फिल्मों में उन्होंने जो है अपने प्रतिभा को दर्शाया है। साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म के माध्यम से मानवता, अकेलेपन और रिश्तों की सच्चाई को दिखाया है, वहीं पर जिंदगी के संघर्ष को भी बखूबी दिखाया है। फिल्मों में, गानों में तो इन्होंने आवाज़ दी ही है, लेकिन बड़े पर्दे पर कुछ ऐसी फिल्में भी आई है जहाँ पर इनका एक अलग अंदाज हमें देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर रेडियो मनोरंजन पर यह है आपके सितारे प्रोग्राम और आपका प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे कई अवार्ड्स से जो है किशोरदा सम्मानित भी हुए हैं, आराधना, अमानुष, डॉन, नमक हलाल जैसी फिल्मों के लिए इन्हें अवार्ड मिले हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं जिन्हें हम आज भी सुनते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपके सितारे जो प्रोग्राम है ख़त्म होने को चला। आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने याद किया उस आवाज़ को जिसे हम आज भी सुनते हैं, किशोरदा को, और आज का ये जो सेगमेंट रहा आपको पसंद आया होगा ऐसी उम्मीद हम करते हैं। इस आखिरी गाने के साथ आपके सितारे ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा और इसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर इस प्रोग्राम को किरण जानकी जी की प्रस्तुति में। उसके बाद एक भोजपुरी गीत होगा और 6 बजे आप सुन पाएंगे समाचार MBC रेडियो पर। तो अगली मुलाकात तक के लिए सुमिता को दीजिए अनुमति। नमस्कार आप सभी को।

Ay, ay, ay, ay.

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हम एगो ऐसन धरोहर पर बतियाब जोन खाली एगो पूजा ही नहीं है, बल्कि एगो एहसास, एगो महोत्सव है। जब मॉरिशस में 10 दिन तक सुबह शाम हिंदू परिवार के घर अंगना और मंदिर में पूजा के वातावरण रहेला, हर पूजा सामान के दुकान व्यस्त रहेला, साड़ी और कुर्ता में सब लोग नजर आवेला, गरबा और ढांझा के नृत्य के आयोजन चलेला, और साथ ही उधर भारत में गंगा के माटी से माँ के आँख बनावल जाला, जब गरीब और अमीर और हर धर्म के व्यक्ति एगो पंडाल के सामने सिर झुकावेला, खासकर भारत में, त समझ जा कि दुर्गा पूजा चलाल बा। दुर्गा पूजा के अक्सर बंगाल के त्योहार बोलल जाला, खास तौर पर भारत में, लेकिन सच्चाई तो यह है कि न सिर्फ पूरा भारत के आत्मा के उत्सव है दुर्गा पूजा, बल्कि सब मॉरिशन और भारतीय और साथ में मॉरिशन डायस्पोरा देश में दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनावल जाला। दुर्गा पूजा है कहानी शक्ति के, जो महिषासुर जैसन अहंकार के खत्म कर देलक। ये कहानी है घर वापस आवे के। बुरल जला बंगाल में इस समय माँ दुर्गा अपन लैका लोक संगे मैका आवेलन और बेटी के स्वागत खातिर 10 दिन तक पूरा प्रदेश सजावल जाला। एकर महत्व खाली धर्म में नहीं है, ये एगो ऐसन महोत्सव है जहाँ भारत में कुम्हार के टोली में कारीगर लोग गंगा के मूर्ति बनावेलन सा, फिर कलाकार लोग पंडाल के ताजमहल से लेके मंगल ग्रह तक के रूप देवेलन सा, हजारन जना के रोजगार इस त्योहार से मिलेला। यूनेस्को एकदम सही बोलले बा कि दुर्गा पूजा धर्म और कला के सार्वजनिक प्रदर्शन के सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहां हर वर्ग हर धर्म के सब दीवार टूट जाला। 15 दिसंबर 2021 वो दिन है जब कोलकाता के दुर्गा पूजा के दुनिया नमन करलक, सलाम करलक। पेरिस में यूनेस्को के बैठक में भारत के दुर्गा पूजा इन कोलकाता के मानवतावाद के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सूची में शामिल करा गया। ये छोटा बात नहीं है, दुर्गा पूजा भारत के पहला त्योहार है जिसके सम्मान मिलल यूनेस्को के ICH लिस्ट में। इस सूची में पहला रहल योग, फिर कुंभ मेला और फिर रामलीला और एकर बाद दुर्गा पूजा और अब तक दीपावली भी एकर में अंकित हो गल बा। ई मान्यता के बाद दुनिया भर के लोग अब कोलकाता के गली में उ कला के देखे आवेलन सा, जेकर हर बरिस बहुत ही धूमधाम से मनावे के इंतजाम होवेला। आप सब कोई के दुर्गा पूजा और नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद, नमस्ते।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ।

आपका स्वागत। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। एलर्जी तोमा के इलाज में एक अहम कदम। जीतू अस्पताल में भारतीय और मर्शन डॉक्टरों की टीम ने 7 घंटे लंबा जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया, उसकी स्थिति में सुधार। रात मॉरिशस के कई इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़, पुलिस स्टेशनों पर हमले, सड़कों पर रुकावटें और सैंकवा में जेईपीएम की तैनाती, एक पुलिसकर्मी घायल हुआ।

0: हिंसा का असर आज आम जिंदगी पर भी दिखाई दिया। 33,000 से ज्यादा छात्रों की परीक्षाएं स्थगित हुई। कई इलाकों में दुकानें बंद रही और बस सेवाएं प्रभावित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सऊदी अरब में मिसाइल हमलों के बीच सैन्य तनाव बढ़ा। राजधानी रियाद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद होने की खबर। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज दोपहर 2:30 बजे से कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री दफ्तर के मुताबिक बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई और शांति बहाल करने के लिए सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया जाना था। प्रधानमंत्री ने जनता की सुरक्षा, एकता और देश में शांति बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक के बाद सरकार की तरफ से एक और बयान जारी किया जाएगा। और देश के कई इलाकों में हुई हिंसक घटना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। सिलसिले में आज मंत्रिमंडल की आपात बैठक लगी। कॉलव्यू में रविवार रात गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुई 27 वर्षीय एलोजी तोमा का जीतो अस्पताल में 7 घंटे लंबा ऑपरेशन चला। भारतीय और मर्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ने मिलकर ये जटिल ऑपरेशन किया। डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन सफल रहा है और शुरुआती संकेत काफ़ी उत्साहजनक हैं। हालांकि एलोजी तोमा की हालत पर अभी भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अनाबेल वुलबेया, गीता स्मरण।
1: 7 घंटे तक ऑपरेशन चला एक जटिल सर्जरी, जिसमें मॉरिशस और भारत के 13 विशेषज्ञों की टीम ने भाग लिया। कॉलिव्यू में गोली लगने से घायल हुई एलोजी तोमा का जीतू अस्पताल में इलाज किया गया। भारत से विशेष रूप से आए 6 विशेषज्ञ अपने साथ आवश्यक चिकित्सा उपकरण भी लाए थे। उन्होंने 7 मॉरिशन विशेषज्ञों के साथ मिलकर ऑपरेशन किया। डॉक्टर श्यामलोल कहते हैं, जीतू अस्पताल में एक खास उपकरण है, एक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। इसी के जरिए सटीकता से देखा गया कि गोली कहाँ है। अंत में इसी उपकरण की मदद से उसे पकड़ कर बाहर निकाला गया। 7 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं। भारतीय विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खंडेलवाल कहते हैं, आज दवाइयां बंद की गई, मरीज के सभी परीक्षण उत्साहजनक हैं, वो होश में हैं और बहुत जल्द वेंटिलेटर भी हटा दिया जाएगा।
2: एंड वेरी सून आवर प्लान इज टू रिमूव द वेंटिलेटर एंड मेक हर मोबिलाइज।
1: ये सर्जरी मॉरिशस और भारत की चिकित्सा टीमों के बीच सहयोग का एक उदाहरण है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने इस संयुक्त प्रयास की सराहना की। ये ऑपरेशन 100% सफल रहा। सभी डॉक्टरों और उन सभी लोगों को जिन्होंने इसमें भाग लिया धन्यवाद देते
3: हैं।
1: एलोजी तोमा के परिवार के लिए ये खबर उम्मीद लेकर आई है। पिछले कई दिनों से वे चिंता और बेचैनी के दौर से गुजर रहे थे। उसमें सुधार आया है, उसने हमें देखा और हमें पहचाना भी, अपनी माँ का हाथ भी पकड़ा। हमारे लिए ये राहत की बात है। जोनाथन तोमा कहते हैं, अब मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से देख सकूंगा। हमने उसे ठीक करने के लिए संघर्ष किया है। हालांकि शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। एलोजी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उनकी सेहत में सुधार का आकलन करने और आगे के इलाज की दिशा तय करने के लिए अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण होंगे।
0: कल रात मॉरिशस के कई इलाकों में तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आई। पुलिस स्टेशनों पर हमले हुए, सड़कों पर रास्ते रोके गए, जबकि सैंक्वा में हालात संभालने के लिए JPM को तैनात किया गया। अबेकोबी में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेल्विना शाजा संगीली, आशिता रघु, सचिन जगलोल और संतोष सिगुलाम की रिपोर्ट। विवरण गीता स्नारायण।
1: सैंक्वा के प्रवेश में अबेकोबी में कल जैसे ही रात होने लगी, पहले फसाद की घटना की सूचना मिली। मुख्य सड़क पर पहिए और अन्य वस्तुएं जलाई गईं। चालकों से उन जगहों के आसपास न जाने का निर्देश दिया गया। सैंक्वा अन्य इलाकों से कट गया।

0: दक्षिण से प्रवेश करने वाली निकोले गली और उत्तर के प्रवेश में अब्याकोंबे राउंड अबाउट तक आवाजाही बंद रही। कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ताकत के नॉर्थ डिवीजन ने स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की। बहुत जल्द पुलिस कर्मियों को ही प्रदर्शन का निशाना बनाया गया। उनकी ओर वस्तुएं फेंकी गयी, जबकि कुछ लोग पुलिस स्टेशन पर हमला करने लगे। अन्य गलियों में स्थिति शांत नजर आ रही थी। मुख्य सड़कों पर दंगे फसाद किए जा रहे थे।
1: Une seule affaire qui est importante, que tout le monde comprend, que tout le monde sait quoi, et peu importe, même si tu es à côté, bois morson, whatever, côté d'été, il y a du monde malade dans l'endroit là. Il y a du monde qui pas bien, il y a du monde qui est malade l'équerre, il y a du monde qui est diabétique. Qui veut dire pour l'action que je peux faire là, je ne peux pas les autres problèmes avec les autres du monde qui pas mérité. Faire du monde comprend que le combat, il n'est pas comme ça. Mais ça, ce n'est pas la solution, mais du fait, le prétexte est servi maladie. Ou blessure une personne qui pélite entre la vie et la mort pour se survivre, pour qu'il nous fait des autres.
0: पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े गए। पुलिस की अन्य इकाइयां भी भेजी गईं।
2: Situation sous contrôle pour le moment. Nous ne réussissons qu'on va manquer manifester, juste aller, se dégager les lieux. La police nous a tout sous contrôle et nous pouvons rassurer la communauté ici qui toutes affaires pour dérouler dans l'ordre. Mais seulement, mon plaisir, c'est qui vous fait une affaire extravagante, vous subirez les conséquences.
0: आज सुबह स्थिति का जायजा लिया गया। दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। सार्वजनिक परिवहन बाधित हुआ। स्कूलों पर इसका ज्यादा असर पड़ा। आज के लिए निर्धारित साल के अंत की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई।
3: कल रात की हिंसा के बाद आज सुबह भी लागोलेत और बम्बू समेत कुछ इलाकों में हिंसा घटनाएं सामने आईं। तोड़फोड़ और नुकसान के बीच लोगों में चिंता बनी हुई है। आखिर इन घटनाओं के पीछे क्या वजह है? सेंट क्रॉस समेत कई इलाकों में हमारी टीम ने लोगों से कई सवाल पूछे। अलग अलग प्रक्रियाओं की प्रतिक्रियाओं के बीच एक अपील सामने आई, शांति लौटे और हालात सामान्य हो। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात हुई हिंसा में कई पुलिस स्टेशनों और सरकारी सुविधाओं को निशाना बनाया गया। कहीं पत्थर फेंके गए तो कहीं पेट्रोल बम से हमले हुए। कुछ इलाकों में भारी नुकसान हुआ। दोबारा हिंसा की आशंका को देखते हुए सावधानी के कदम उठाए गए हैं। आज सुबह तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 2 नाबालिग भी शामिल हैं। दोनों को अदालत में पेश किया गया और उन्हें रिहा किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया। आज मंगलवार 13 अक्टूबर को के लिए निर्धारित माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं स्थगित होने से 33,893 छात्र सीधे प्रभावित हुए हैं। सोमवार रात कई इलाकों में हुई घटनाओं के बाद छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट अब कैम्ब्रिज और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर परीक्षाओं का नया टाइम टेबल तैयार कर रहा है। परीक्षाएं दोबारा से करने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। अभी अभी हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार मंत्रालय द्वारा जारी एक कम्युनिके में सूचित किया गया है कि कल भी देश के स्कूल आम तौर के बजाय बंद रहेंगे, लेकिन एससी और एचएससी की निर्धारित परीक्षाएं सामान्य रूप से चलेंगी। बस सेवाओं में आई रुकावटों के बाद आज सुबह से यातायात धीरे धीरे सामान्य पर होने लगा। पश्चिमी इलाकों को छोड़कर कई मार्गों पर सुबह से बसें फिर चलने लगी। दिन चढ़ने के साथ सेवाओं में सुधार हुआ। खासकर पिचित्रिविया में भी बसों की आवाजाही धीरे धीरे बहाल हुई। केंद्र मौका गीता स्नरन।
0: सुबह करीब 9:30 बजे एनटीसी की बस सेवाएं धीरे धीरे सामान्य पर लौटने लगी। सुबह 6 बजे से ही बसों को उनके निर्धारित मार्गों पर रवाना कर दिया गया था। हालांकि पश्चिमी इलाके में सेवा देने वाली बसें नहीं चल रही थीं। एनटीसी के ट्रैफिक मैनेजर श्याम दाजी कहते हैं,
4: बंदीपु कुमला टोकेनिक किसे तो ग्रैंड रिवियर अला टोकेनिक से लबा किन गेंच पे ब्लॉकेज ओ गम्सी सिक्योरिटी बन ट्रैवलर ए बन बस

0: Je préfère prendre la voile avec bande policier, bande station qui est dans les alentours. Mais par rapport à les autres dépôts, comme le sud, rivière du Rempart, graduellement, à partir de 6 heures, nous recommençons à déployer bande bus.
1: वाक्वा बस स्टेशन पर हालांकि स्थिति कुछ अलग नजर आई। मंगलवार को सब्जियों का साप्ताहिक बाजार होने के कारण यहां लोगों की काफी चहल पहल थी।
2: Là, on est en presque 30 minutes là. On attend ça bis rouge là qui passe Closel, Kaulalian, après la Carbone.
3: Une bazar ici là pas. Quand on finit, c'est le gym du marché là, attend bis, banamet bis, met bis.
1: बसें बहुत कम नजर आई और उनमें यात्रियों की संख्या भी काफी कम थी। कुछ यात्रियों के लिए ये असामान्य स्थिति थी जिन्हें सीमित बस सेवाओं के बीच सफर करना पड़ा। नेशनल लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने आज एक विज्ञप्ति में कहा कि सभी बस सेवाएं आज शाम 6 बजे बंद हो गईं।
4: बोबासा और बॉम्बू समेत कई इलाकों में कल रात दुकानों और सुपरमार्केट्स को निशाना बनाया गया। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ मचाई गई तो कहीं जबरन अंदर घुसने की घटनाएं सामने आई। आज दिन के दौरान कारोबारी गतिविधियां धीरे धीरे फिर से शुरू हुई लेकिन दुकानदारों और लोगों में सतर्कता बनी रही। मॉरिशस में हाल की तनावपूर्ण घटनाओं के बीच पोर्ट लुई के बिशप जॉन मिकाएल जॉन ने शांति और अहिंसा की अपील की है। रोम से जारी अपने संदेश में उन्होंने इलोजितोमा के प्रति चिंता जताई और उन लोगों उन बच्चों का भी जिक्र किया जो आज अपनी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि देश में शांति और न्याय बनाए रखने के लिए हिंसा की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाए जाना जरूरी है। मोंसेयर जॉन मिकाएल जॉन को सुनते हैं।
5: Qui n'est capable de trouver la santé. On pense à plein de enfants, à des jeunes aussi, qui peuvent vivre cette situation-là et qui doivent bien rester à la place. On prie aussi, du monde qui a peut-être aussi une appel, une angoisse, qui ne peut pas laisser nous gagner par sa psychose, qui a fait aussi, à travers aussi des problèmes de réseaux sociaux, bien faire attention aussi. Ça crée aussi une tension et qui est capable de faire beaucoup de dégâts. Alors, qui tout le monde qui est de bonne volonté, qui travaille pour la paix, mais on essaie maintenant ensemble pour que la paix retourne dans le pays, qu'elle la paix aussi, qu'elle construise, c'est une volonté aussi de non-violence.
4: हाल की झड़पों के बाद मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन ने लोगों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील की है। फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुरबिन ने आज सुबह गेजी में एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान देश में आपसी भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया। भोजराज गुरबिन को सुनते हैं।
6: Nous fait un appel, nous garde nous calme, nous garde nous l'unité. Et solidarité. Et quand nous faisons la prière, nous pas faire la prière juste pour nous faisons la prière pour nos enfants, nous faisons la prière pour la famille en entier, nous faisons la prière pour nous l'endroit, et nous faisons la prière aussi pour nos pays. Pour que tout passe bien, tout passe correct, et comment on peut dire, nous donnons une période Durga Puja avec bénédiction Durgama, tout vous passe correct, vous faites un appel avec eux tout. Nous gardons nous calme parce que quand nous faisons une affaire de colère, nous prenons une décision de colère tous les temps, les mauvais.
4: और देश में शांति सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए जमा मस्जिद ने लोगों से प्रार्थना करने की अपील की है। आज जारी एक बयान में मस्जिद के उपाध्यक्ष निसार रामतुला ने इलोजितुमा की सफल ऑपरेशन पर संतोष जताया और लोगों से उनके तथा उनके परिवार के साथ खड़े रहने की अपील की। उन्होंने सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए सभी से सतर्कता और जिम्मेदारी दिखाने को कहा। साथ ही पानी की कमी जैसी मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए एक दूसरे की मदद करने पर भी जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। सऊदी अरब में हुती विद्रोहियों के मिसाइल हमलों के बीच तनाव बढ़ गया है। राजधानी रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने की खबर है। सऊदी सेना के मुताबिक सोमवार को 3 बैलिस्टिक मिसाइल

0: मिसाइलों को रोका गया। इससे पहले हवाई अड्डे पर हुए हमलों में कई लोगों की मौत हुई और सैकड़ों के घायल होने की खबर है। आशा गोबिन।
1: सऊदी अरब और हुती विद्रोहियों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। सोमवार को सऊदी अरब की सेना ने दावा किया कि उसने रियाद के ऊपर एक और दक्षिण पश्चिमी शहर के ऊपर दो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया। हुती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। लगातार हो रहे हमलों के बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। हवाई सेवाओं से जुड़ी सूचना के मुताबिक ये बंदी कम से कम 17 अक्टूबर तक जारी रह सकती है। सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इससे पहले शनिवार को हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई थी और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। रविवार को भी हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक देश के दूसरे हवाई अड्डों पर भी हमलों की खबर है। हुती विद्रोहियों का कहना है कि ये हमले यमन में सऊदी अरब की बढ़ती सैन्य कार्रवाई के जवाब में किए जा रहे हैं। वहीं सऊदी अरब और उसके सहयोगियों ने इन हमलों की निंदा की है। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों ने सऊदी हवाई अड्डों पर यात्रा को लेकर चेतावनी जारी की है।
0: दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत ने अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकास की संभावनाओं को सामने रखा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अप्रैल से जून के बीच भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी है। इस बीच IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। मास्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाली एक काफी जोरदार आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आज रात दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटू पर रह कर हल्की बारिश हो सकती है। कल सुबह भी इन इलाकों खासकर ऊंचाइयों पर बारिश होने का अनुमान है, जबकि दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा, 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 5:40 पर सूर्योदय, शाम को 6:11 पर सूर्यास्त होगा।

देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में लुदोविक हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शोक समाचार।

शोक समाचार सुनिए। ब्रांच रोड लालमाटी में, ब्रांच रोड लालमाटी में 53 साल की 53 इयर्स ओल्ड श्रीमती रेणुका न्यूर, श्रीमती रेणुका न्यूर पिताशी नाम गोपाल, जो रेणु नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे, इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके पति श्री विनय न्यूर के मकान ब्रांच रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक में, लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक में 85 साल की 85 इयर्स ओल्ड श्रीमती रंबावती सुकन, श्रीमती रंबावती सुकन जो लीलू नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। काओलालियान सोल्फेरिनो नंबर 3 वाकवा में, काओलालियान सोल्फेरिनो नंबर 3 वाकवा में 75 साल की 70

0: 25 years old, Shrimati Dhanwanti Balaram, Shrimati Dhanwanti Balaram, पैदाशी नाम लड़का जो शीला साबित नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे, इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके मकान काहोलालियान सुल्फेगिनो नंबर 3 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 8:01 PM। शिवाजी लेन मेलरोज में, शिवाजी लेन मेलरोज में 60 साल के 60 years old श्री चंद्रसेन नाथिया, श्री चंद्रसेन नाथिया जो गौसो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे, इनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे इनकी माँ श्रीमती रानू नाथिया के मकान शिवाजी लेन मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोता एम्बलॉन्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 10:30 AM। कोलाबू मोतालोंग में, कोलाबू मोतालोंग में 73 years old श्रीमती कृष्णावती रामप्रसाद, श्रीमती कृष्णावती रामप्रसाद पैदाशी नाम महावीर सिंह जो चिफिया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी गुरुवार 15 अक्टूबर को, इनकी अर्थी गुरुवार 15 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे इनके बेटे श्री आतीश रामप्रसाद के मकान कोलाबू मोतालोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैफकिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन थर्सडे 15th of October। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

जी हाँ दोस्तों, एक खूबसूरत सी शाम और इस खूबसूरत शाम में लेकर आए हैं आपका प्रोग्राम नई सोच। जैसे हम कहते हैं कि जिंदगी तो एक बार मिलती है और जिंदगी के हर पल को हसीन बनाना ये आप ही के हाथ में होता है। जिंदगी के खूबसूरत पलों को यहाँ पर हम खुलकर जीना चाहते हैं और अभी के लिए कुछ ऐसे गाने जो जिंदगी को और भी हसीन महसूस करवाते हैं, कुछ गाने ऐसे जो जिंदगी का फलसफा समझा जाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, एंजॉय करें प्रोग्राम नई सोच अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक। मैं हूं परी आपके साथ।

जिंदगी का एक रिवाज है दोस्तों कि कहते हैं ना कि अगर खुशी के पल है तो इन्हें आप खुलकर जिए, अगर दुख महसूस हो रहा है तो ये बात हमेशा सोच कर रखिए कि ये जो पल है हमेशा तो नहीं रहने वाले, आज दुख तो कल सुख ज़रूर आएगा। यही तो ज़िंदगी का कारवां है, कभी खुशी कभी गम, और शायद इन्हीं पलों से ये जो जीवन है थोड़ा सा और सुंदर बन जाता है। तो अभी के लिए हमारा

और चलिए अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे अगले प्रोग्राम की ओर, जिसका नाम है दिलों की आवाज़। खूबसूरत गीतों का कारवां जारी रहेगा रात के 9 बजे तक।

वार्म वेलकम हमारे सभी लिसनर्स का RM3 रेडियो मनोरंजन जी हाँ लेकर आए हैं प्रोग्राम दिलों की आवाज़। जानते हैं आप दोस्तों की रात का ये जो समय होता है, शाम का ये जो समय होता है, खास होता है, स्पेशल होता है और कुछ गीतों के साथ आपके दिल को लुभाएंगे, आपके दिल को बहलाएंगे। परी का साथ है रात के 9 बजे तक।

कहते हैं कि एहसास लफ्जों में ढल जाते हैं और कभी कभार तो लफ्जों की जरूरत भी नहीं होती, बस कुछ स्वीट मोमेंट्स एंजॉय कर पाते हैं गीतों के साथ, और गीतों में जुड़े हुए जो भी अल्फाज हैं वो शायद आपके दिलों की बातों को एकदम परफेक्टली बयां करते हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये अगला गीत।

मुझे। खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन आर एन थ्री रेडियो मनोरंजन। जी हाँ दोस्तों, आप सुनते रहना। अभी थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज है पूरे पॉपुलेशन के लिए, उनका जो कम्युनिके है आप लोगों के लिए। तो बस जुड़े रहे ऑन आर एन थ्री रेडियो मनोरंजन।

कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं, किसी की यादों में मुस्कुराने का नाम है। कभी दूर रहकर भी कोई दिल के पास होता है और कभी एक अनजान सा चेहरा भी खास होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं इन गीतों को आप पसंद कर रहे हैं। अगला गाना आप सभी के लिए।

कहते हैं दोस्तों कि हर मोहब्बत की कहानी मुकम्मल हो जरूरी नहीं, हर ख्वाब हकीकत में बदल जाए जरूरी नहीं। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ याद बनकर आते हैं, मगर जाते जाते दिल में अपनी एक दुनिया बसा जाते हैं।

कहते हैं कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ लोग पास ना होकर भी कभी दूर नहीं होते। उनकी एक मुस्कुराहट याद रह जाती है और उनकी कही एक बात उम्र भर साथ रह जाती है। तो चलिए अभी के लिए तो खूबसूरत गाने चल रहे हैं, रोमांटिक गानों का कारवां आपके नाम, दैट्स योर दिलों की आवाज़। मैं हूं परी आपके साथ।

इंतजार में भी एक अलग मजा होता है जब किसी एक इंसान का ख्याल हर पल आपके पास होता है तो फिर फोन की एक आहट पर भी नजर जो है वो ठहर जाती है और शायद कभी एक दस्तक ये एहसास दिलाती है कि शायद कहीं ये वो तो नहीं. यही तो एक एहसास है जो खास है एंड प्यार भरा एहसास जो जीवन को और भी सुंदर और भी खूबसूरत बनाता है. एंड ये जो रोमांटिक गाने हैं बस इन्हें गुनगुनाते हुए इसी एहसास को हम आप तक पहुंचा रहे हैं.

और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमेशा हम कहते हैं कि सबसे हसीन बात यह है आपका साथ, आपका प्यार। तो ऐसे ही इस साथ को बनाए रखिएगा और आपका प्यार हम तक पहुँचाते रहिएगा। गीतों का कारवां आपके लिए जारी रहेगा। RM3 रेडियो मनोरंजन, मॉर्निंग हो या नाइट, ब्यूटीफुल ट्रैक्स लेकर आते हैं आपके लिए। परी का साथ दीजिए इजाजत एंड हैव अ ग्रेट टाइम रेडियो मनोरंजन के साथ।

बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, दिल को सुकून मिलता है नात रसूल से। मोहतरम सामईन, इसी खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा आज का शबाना प्रोग्राम महफिल शब अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। उम्मीद है आपने आज की बज़म को पसंद फरमाया होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब हमारी मुलाकात अगले मंगल को होगी। तब तक के लिए आपका मेज़बान निसार अख्तर इजाज़त का तलबगार हैं। अस्सलामु अलैकुम, शब बख़ैर।

0: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious नवरात्रि।
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: मंगलवार 13 अक्टूबर रेडियो मॉरिशस पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। और इस विशेष कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम जुट चुके हैं। आशा करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और इस एक घंटे के प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा साथ देंगे। तो चलिए माता रानी का नाम लेते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं।

श्रोताओं, आज नवरात्रि की तीसरी रात्रि है जहां पर माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। माँ चंद्र घंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे का आकार होता है और ये इसी के कारण माँ चंद्र घंटा इन्हें कहा जाता है। उनका स्वरूप साहस, शक्ति, शांति और वीरता का प्रतीक है और माँ जो है अपने भक्तों का सदा कल्याण करती है।

नवरात्रि जो है हमारे प्रमुख पर्वों में आता है और नवरात्रि का ये जो पावन पर्व है सभी भक्त बड़े हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाते हैं। नवरात्रि का ये पावन पर्व माँ दुर्गा के नव स्वरूप को दर्शाता है और माँ दुर्गा का हर एक रूप हमें कुछ ना कुछ अवश्य सिखाता है। माँ दुर्गा के इन रूपों में हमें सच्चाई दिखाई देती है, धैर्य दिखाई देता है, धर्म दिखाई देता है और सच्चाई के मार्ग पर चलने का रास्ता नजर आता है। तो चलिए माता रानी को प्रणाम करते हुए अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

श्रोताओं, नवरात्रि के इस पावन उपलक्ष में आशा करते हैं कि ये जो व्रत आप धारण कर रहे हैं, ये जो पूजा अर्चना आप कर रहे हैं, माता रानी तक अवश्य पहुंच रही होगी।

0: यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious नवरात्रि।
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: कि नवरात्रि के प्रथम दिन हमने माँ शैलपुत्री को पूजा, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की, आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को हम पूज रहे हैं, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की अर्चना होती है, पांचवें दिन माँ स्कंद माता को पूजा जाता है, छठे दिन माँ कात्यायनी का स्मरण किया जाता है, सातवें दिन माँ कालरात्रि की आराधना होती है, आठवें दिन माँ महागौरी को हम याद करते हैं और नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री को पूजते हैं और दसवें दिन जो है दशमी होती है। दशमी की बात करें तो ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होती है।

श्रोताओं, नवरात्रि के दौरान भक्ति और श्रद्धा से हर कोई माँ दुर्गा को पूजता है। मंदिरों में माता का पाठ होता है, घरों में लोग अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार माता रानी का ध्यान करते हैं और कन्या

बताओ नवरात्रि के उपलक्ष में इस विशेष कार्यक्रम को अभी आप सुन रहे थे। इस एक घंटे के अंतर्गत आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंतिम प्रस्तुति के साथ हमारी आपकी भेंट समाप्त हो जाएगी। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन पर सदा रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सुमिता को अनुमति दे। नमस्कार।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे लफ्जों में बयां करना आसान नहीं। कभी आंखों से बयां हो जाता है तो कभी खामोशी में छुपा रहता है, और कभी एक गाना वो सब कह देता है जो हम नहीं कह पाते। नमस्कार, मैं हूँ नलमणि और आपका स्वागत है सुनहरे पल में। आज की रात समर्पित है उन्हीं प्यार भरे नगमों के नाम जिन्होंने कई दिलों को मिलाया है और कई खूबसूरत कहानियों को जन्म दिया है।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

भरा प्यार, नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना। वो पहली मुलाकात, वो छोटी छोटी नजरें मिलाना और फिर बिना वजह मुस्कुराते रहना। उस दौर में ना हर बात कहने के लिए फोन था, ना हर एहसास बयां करने के लिए कोई संदेश। कभी चिट्ठी ही दिल का हाल कह देती थी। वैसे आपको अपने पहले प्यार की कोई याद आती है? चलिए अब एक ऐसा गीत सुनते हैं जो दिल के तार छेड़ते हैं।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। मोहब्बत में मिलना जितना खूबसूरत होता है, कभी कभी इंतजार भी उतना ही गहरा होता है। किसी के आने की राह देखना, दरवाजे पर आहट होते ही नजर उठाना और फिर उस एक मुलाकात की याद में पूरी शाम गुजार देना। आज के दौर में सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन पुराने जमाने के इश्क में सब्र का भी अपना एक मजा था। इसी एहसास को समर्पित है ये अगला नगमा आपके ही सुनहरे पल में।

प्यार सिर्फ कहना नहीं, निभाना भी होता है। प्यार सिर्फ खूबसूरत लफ्जों का नाम नहीं, प्यार है किसी की फिक्र करना, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना और बिना कहे किसी के दिल की बात समझ लेना। पुराने हिंदी गानों में मोहब्बत की

मोहब्बत के नगमों का सफर यही पर अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचता है, लेकिन प्यार के एहसास कभी खत्म नहीं होते। किसी के लिए एक पुराना गीत आज भी खास है, तो किसी के लिए कोई धुन एक खूबसूरत याद का हिस्सा है। रिश्तों को वक्त दीजिए, अपनों को अपनापन दीजिए और दिल की बात कहने में देर मत कीजिए। मैं हूं नमनी और ये थे सुनहरे पल। शुभ रात्रि आपको।

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: Assalamualaikum.
3: Came to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandiriki Hrudayapurvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum Vanakkam.
7: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप